मैंने कहा यस। तो चैपल हिल का पहला एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट यूनिवर्सिटी प्लेस में 16 सितंबर को ग्राहकों को दुकानों के बीच अल्कोहल ले जाने की अनुमति मिलेंगी। दूसरी न्यूज़ है कि अगले वीक चैपल हिल में वैश्विक आर्थिक और टेक लीडर्स की इनोवेशन बैठक होगी। उसके बाद कैरी और दरम काउंटी से भारी विरोध और पानी बिजली की चिंताओं के कारण डेटा सेंटर्स के विकास पर अंतरिम रोक जो है वो लगा दी गई है, जो काफ़ी अच्छी बात है, जिससे इन्वायरमेंट को भी नुकसान होने वाला था। इन्जॉय करते हैं ये अगला गाना, आप बने रहिएगा रेडियो नायरा पर। एंड कैसे चल रही है आपकी आज शाम? खुश तो बहुत हो गए ना आप, क्योंकि वीकेंड है, उसमें रक्षाबंधन है, मतलब बहुत अच्छा है सब कुछ। बने रहेगा रेडियो नारा पर, पक्का देसी पक्का लोकल।

न्यूज ये है कि मौसम के बारे में, सबसे पहले मौसम और सुरक्षा की बात करें तो आज पूरे ट्रायंगल एरिया में भारी बारिश और तेज तूफान आंधी का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि धीमी गति से बढ़ने वाले इन तूफानों के कारण अचानक बाढ़ यानी फ्लैश फ्लडिंग आ सकती है और हवाएं 50 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। इसलिए सड़कों पर निकलते समय बेहद सावधान रहे, आपका ख्याल रखे, क्योंकि मौसम के साथ नेचर के साथ कोई गड़बड़ नहीं, कोई मजाक नहीं। नेचर को सीरियसली लेना है, नेचर की टेक केयर करनी है, तभी तो नेचर आपकी टेक केयर करेगा। इसलिए सावधानी पूर्वक गाड़ी चलानी है, घर से बाहर निकलते वक्त एक बार मौसम चेक कर लेना है, रास्ते किन रास्तों पे पेड़ गिरे हैं, कहाँ से ट्रैफिक जाम है पहले ही आपको चेक करना है ताकि आपकी असुविधा ना हो। एंजॉय करते हैं, ये अगला गाना बने रहेगा रेडियो नायरा पर, पक्का देसी पक्का लोकल।

आज सुन रहे हैं रेडियो नारायण निर्मला नाइट्स एंड बात करते हैं बॉलीवुड के गलियारों से आई हुई कुछ खबरों के बारे में। तो टॉक्सिक का कलेक्शन जानने के लिए जनता इस वक्त जो है वो काफी उत्सुक है। यश और कियारा आडवाणी स्टारर फिल्म टॉक्सिक ने बॉक्स ऑफिस पर गिरावट के बावजूद भारत में 160 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है। सोशल मीडिया पर फिल्म के कुछ सील्स को लेकर सिद्धार्थ मल्होत्रा को भी ट्रोल किया जा रहा है। और मैं यही कह रहा था कि टॉक्सिक के बारे में जो है वो मिक्स प्रतिक्रियाएं ऑडियंस की आ रही है। बहुत लोगों को तो ये फिल्म पसंद नहीं आ रही है, लेंदी है, बिना लाइक सर पैर की स्टोरी है ऐसे बताया जा रहा है। तो मैंने तो अभी तक ये मूवी देखी नहीं है, लेकिन ऑडियंस के रिएक्शन से तो ऐसे पता चल रहा है कि ये बहुत मिक्स रिव्यू वाली है। जिनको पसंद है उनको ही पसंद है, लेकिन कलेक्शन के बारे में बात करें तो यह स्टारर फिल्म है तो कलेक्शन काफ़ी अच्छा किया है। एंजॉय करते अगला गाना।

नाइट सैंड, दिल चाहता है कि 25 साल आज पूरे हुए हैं, दिल चाहता है मेरी ये वन ऑफ फेवरेट मूवी है। उसके बाद मैं बहुत फैन हूँ आकाश का, आमिर खान का, अक्षय खन्ना एंड सैफ, लाइक बहुत क्या यार ये ट्रियो है, ऐसा ट्रियो तो कभी देखने मिला नहीं। फिर आप अगर थ्री इडियट्स की बात भी करते हो तो मुझे भी ये ट्रियो का मज़ा थ्री इडियट्स में आया, यानी टू बी फ्रैंक। तो बॉलीवुड की कल्ट क्लासिक फिल्म दिल चाहता है कि रिलीज़ को 25 साल पूरे होने पर मुंबई में एक ग्रैंड रीयूनियन रखा है। इस खास मौके पर फिल्म के लीड स्टार्स आमिर खान, सैफ अली खान और डायरेक्टर फरहान अख्तर जो है वह एक साथ नजर आए। दिल चाहता है का म्यूज़िक आज भी सारे म्यूज़िक को पीछे छोड़ दे, ऐसा म्यूज़िक था। टाइटल सॉन्ग्स जिसमें तीन दोस्त गोवा जाते हैं एंड उसके बाद गोवा में उनके साथ जो किस्से होते हैं, ये फ्रेंडशिप की जो स्टोरी है, उनके बाद मनमुटाव आ जाते हैं, कैसे सॉल्व होते हैं, इट्स लाइक बहुत ही प्यारी मूवी है। फिर से देखने का मन कर रहा है, आज अगर टाइम मिलता है तो डेफिनेटली देखूंगा। फिलहाल

रेडियो नायरा पुनर्वना नाइट्स। एंड जैसे कि मैंने कहा था, टॉक्सिक का थोड़ा अप एंड डाउन चल रहा है, मिक्स रिएक्शन आ रही है, तो ये टॉक्सिक के बारे में मैं और बताना चाहूँगा। तो फिल्म में जो है वो ओपनिंग काफ़ी अच्छी हुई, लेकिन रिलीज़ के अगले दिन ही कमाई 60% से ज़्यादा गिर गई है, क्योंकि पहले दिन ना बहुत एक्साइटमेंट थी, यश की मूवी आ रही, लाइक ट्रिपल रोल है आई गेस मूवी में, ट्रेलर में समझ रहा था, तो लोगों को कुछ नया लगा। लेकिन जैसे जैसे ऑडियंस की रिएक्शंस बाहर आने लगे कि फिल्म में कोई मज़ा नहीं है, स्टोरी नहीं है, बिरा सर पैर का जो है वो दिखाया गया है सब कुछ, एंड यू नो वायलेंस एंड ये सारी चीज़ें, सो ऑडियंस की जो रिएक्शंस है इतनी खास नहीं है, तो फिल्म में गिरावट हो चुकी है, कलेक्शन इतना कुछ खास नहीं हुआ है। मतलब KGF जैसा जो देखने को मिल सकता था, उससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन तो ऑडियंस की ऑलरेडी बढ़ गई थी, तो वैसी एक्सपेक्टेशन पे पूरी नहीं उतरी है टॉक्सिक।

वेलकम बैक टू एवरीबडी। एंजॉय किया आपने गाना? मैं यही कह रहा था कि भाई एंड बहन का ये खूबसूरत नाता तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है, यू नो। लाइक अब धीरे धीरे सब लोग अपने करियर की तरफ बढ़ रहे हैं एंड बचपन में त्यौहार तो त्यौहार होते थे। रक्षाबंधन का त्यौहार मतलब जिसका हाथ सबसे ज़्यादा राखियों से भरा हुआ उसकी बहनें बहुत ज़्यादा। एंड वो टाइम में तो कितना प्राउड फीलिंग आता था, बड़ी बड़ी राखियाँ वो टाइम में मिलती थी। एंड 90s के की रिलेट कर पाएंगे, रक्षाबंधन का त्यौहार तो बहुत ही खूबसूरत है, आज भी है, लेकिन बचपन में तो यार क्या ही बताऊँ मैं। लेकिन स्कूल में बचपन के टाइम में आई गेस रक्षाबंधन सेलिब्रेट होता था तो बहुत लोगों को ऐसा रहता था कि इन्होंने मुझे राखी नहीं बांधना चाहिए, उन्होंने मुझे राखी नहीं बांधना चाहिए। तो ये भी बड़े एक क्रेजी मोमेंट रक्षाबंधन के त्यौहार पर आते हैं। एन्जॉय करते हैं अगला ही गाना।

नाजनी हो, सादिसी हो, आशिकी हो, मुझे पता है तुम किस गली हो, किस मोहल्ले जात की हो, मुझे पता है तुम खुश नहीं हो, दिखती तो आजाद भी हो, पर दुनिया तो तुम्हीं से चलेगी, मैं एक लड़का हूँ, तुम मेरे बाद भी हो।

0: क्यों थक रहे हो?
1: छीन लूं मैं तेरा पैसा पैसा पैसा, चैन आए लेके पैसा पैसा पैसा, एक ही तो शौक है मेरा।

WCMC-FM, Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 14.

सुन रहे हैं रेडियो मधुबनी बोला नाइट्स एंड खोसला का घोसला याद है आपको? जी हाँ, खोसला का घोसला मूवी के बारे में बात कर रहा हूँ, है ना। तो नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म खोसला का घोसला ने ठीक 20 साल के बाद अगला पार्ट खोसला का घोसला 2 जो है वो सिनेमाघरों में रिलीज हो गया है, जिसमें अनुपम खेर और रणवीर शौरी मुख्य भूमिकाओं में है। खोसला का घोसला तो याद हो गई आपको, 20 साल के बाद भी अगर आपको ये चीज़ रिमाइंड है, क्योंकि नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म थी यार। तो सेकंड पार्ट जो है इसका रिलीज़ हो चुका है, फिलहाल कोई अपडेट नहीं है सेकंड पार्ट के बारे में कैसा है क्या है, क्योंकि टॉक्सिक इतना लाइक लाइम लाइट में था एंड टॉक्सिक के बारे में जितनी बातें हो रही थी उतनी बातें घोसला का घोसला 2 के बारे में अब तक हुई नहीं है। देखते आगे क्या होता है, फिलहाल एंजॉय करते हैं ये अगला गाना, सुनते रहेगा रेडियो नारा पक्का देसी पक्का लोका।

अब सुन रहे हैं रेडियो नारा पंडा नाइट्स एंड इमरान हाशमी के फैंस के लिए अगेन एक अच्छी न्यूज़, मतलब आवारा पन टू अब तक जो है वो लाइमलाइट में ही है, लाइमलाइट से दूर नहीं जा रही है। हाल ही में रिलीज़ हुई थी कुछ हफ्तों पहले आवारा पन टू, तो आवारा पन टू बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन तो कर ही रही है। इसकी सफलता के बाद इमरान हाशमी अब अपनी अगली एक्शन थ्रिलर फिल्म दैट इज़ गन मास्टर G9 की तैयारी में जो है वो जुड़ चुके हैं। सो आवारा पन टू का जो रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था, मतलब अभी तक फिल्म सिनेमाघरों में चल रही है, ऑडियंस द्वारा पसंद की जा रही है। एंड इट्स लाइक इमरान हाशमी एक तरफ है ना, खा बॉलीवुड एक तरफ जो सेंटेंस है, डायलॉग है, वो इमरान हाशमी ने फिर से एक बार प्रूव कर दिया है। एंजॉय करते हैं फिलहाल अगला गाना एंड बने रहेगा रेडियो नायरा पर, पक्का देसी है, पक्का लोकल भी।

वेलकम बैक। एंजॉय किया आपने गाना। एंड टॉक्सिक वाकई में लोगों के लिए टॉक्सिक बन गई है ऐसा लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग तो यही कह रहे हैं कि फिल्म में अभी मज़ा नहीं आ रहा है। एंड क्या पता यार एक्चुअल में क्या है सीनारियो है, लेकिन अगर जनता कह रही है तो जनता के रिव्यू सर आंखों पर। अगली न्यूज़ है, खिलाड़ी अक्षय कुमार अपनी आने वाली फिल्म डोंट बी शाय में पहली बार एक एलियन की अनोखी दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं। अक्षय जी कितने एक्सपेरिमेंट करोगे और कितनी सारी फिल्में करोगे आप। ये फिल्म 25 सितंबर 2026 को सीधे OTT प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम की जाएंगी। मतलब कोई हेरा फेरी नहीं है कि पहले थिएटर में रिलीज होंगी, देन OTT पे सीधे ही अक्षय कुमार ने कह दिया है कि OTT पे रिलीज होगी। अक्षय कुमार हरदम कुछ नया करते हैं, अच्छा लगता है। एंड कॉमेडी तो डेफिनेटली होने वाली है, क्योंकि एलियन की दुनिया में कदम रख रहे हैं तो ऑफकोर्स, एंड अक्षय कुमार है तो कॉमेडी रहेगी। एंजॉय करते हैं अगला।

एंजॉय किया आपने गाना गाना, वाकई में काफ़ी बेहतरीन था, जिसने वाइब सेट कर रखी है। एंड अक्षय कुमार और सैफ अली खान की आने वाली फिल्म हैवान और प्रतीक गांधी की अर्शद वारसी की फिल्म घमासान के ट्रेलर रिलीज कर दिए गए हैं, जिन्हें सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा रिस्पांस मिल रहा है। रामायण की रिलीज डेट का ऐलान, नितेश तिवारी की बहुप्रतीक्षित फिल्म रामायण की आधिकारिक रिलीज डेट का ऐलान जल्द होने जा रहा है, जिसमें लारा दत्ता कैके के किरदार में नजर आने वाली है। एंड जैसे ही रिलीज डेट का ऐलान होता है, आई विल डेफिनेटली लेट यू नो। कैसे हैं आप एंड कैसे चल रही है आपकी आज की शाम? आप सुन रहे हैं रेडियो नारा पर निर्मला नाइट्स, एंड आज का ये दिन काफ़ी खूबसूरत है क्योंकि रक्षाबंधन जो आज है। एंड यू नो टेक केयर करनी है सबको, क्योंकि मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी करा है उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमेशा मैं कहता हूँ नेचर से मजाक नहीं। एंजॉय करते हैं, अगला ये गाना सुनते रहिएगा रेडियो नारा।

आप सुन रहे हैं रेडियो नारायण निर्वाणा नाइट्स, एंड थैंक यू सो मच रेडियो नारायण निर्वाणा नाइट्स को इतना सारा प्यार देने के लिए। आप हमारे रेडियो नारायण के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर या फिर एप्पल प्ले स्टोर से। कुछ नहीं करना है, सिंपली टाइप करना है रेडियो नारायण, आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन। उसके बाद आप सुन सकते हैं हमारे आरजेएस के एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज, एंजॉय कर सकते हैं, म्यूजिक जो भी रहेगा अनलिमिटेड रहेगा। एंड उसके बाद क्या है कि आपका नेटवर्क अच्छा होना चाहिए, देश और दुनिया के किसी भी कोने से आप रेडियो नायरा सुन सकते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन। एंड 7 से 10 का ये टाइम आप लोगों के साथ बात करते करते कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। कल मिलूंगा आपको रेडियो नायरा के निर्माता नाइट शो पे। 7 से 10 मेरा शो रहता है, इन्जॉय कीजिएगा। एंड अगेन रक्षाबंधन की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। मिलेंगे कल, तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर, खुश रहिएगा।

आप सुन रहे हैं रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4, 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: बाबा जी की बूटी।
1: नया साल, नई उम्मीदें, नए गाने, नए सपने, नई बातें नए साल पर, सब कुछ नया सिर्फ रेडियो नायरा पर।

सुनते रहिए रेडियो नायरा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

आप सुन रहे हैं रेडियो नारा 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

सुनते रहिए रेडियो नहरा 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM पक्का देसी

WCMC FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 1490.

0: Hey guys, hit the subscribe button right here to catch more of These Shockies.
1: आप सुन रहे हैं रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल.

आप सुन रहे हैं रेडियो नारा 101.9 FM 99.9 FM SD4 4090 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

नया साल, नई उम्मीदें, नए गाने, नए सपने, नई बातें नए साल पर, सब कुछ नया सिर्फ रेडियो नायरा पर।

रेडियो सिटी पर सुनिए द हम्मा सॉन्ग, संग बाय जुबिन नौटियाल, शाशा तिरुपति, कंपोज बाय ए आर रहमान, रिक्रिएटेड बाय बादशाह एंड तनिष्क, एंड रिटन बाय महबूब।

சுந்தரகி ரேடியோ நாடா 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM பக்கா தேசி பக்கா லோக்கல்.

आप सुन रहे हैं रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

सुनते रहिए रेडियो नहरा 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

आप सुन रहे हैं रेडियो नारा 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

आप सुन रहे हैं रेडियो नारा 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

0: थे। बाकी सब ठीक,
1: बस चल रहा है।
0: बाकी सब ठीक,
2: बस चल रहा है।
0: बाकी सब ठीक है ना?
1: बस चल रहा है भाई।
0: व्हाट अबाउट यू?
2: हाँ चल रहा है।
0: बाकी सब ठीक,
1: बस चल रहा है।
0: बाकी सब ठीक,
2: बस चल रहा है।
0: बाकी सब ठीक है ना?
1: हाँ ठीक है।
0: और तेरा?
2: बस चल रहा है।
3: कितना मनमोहक व्यू है, इतना सन्नाटा क्यों है, देखो ना ढलता सूरज धीरे धीरे धीरे धीरे ढल रहा है।
0: बाकी सब ठीक,

0: वैसे भी सुना है आजकल भेड़िया लोगों का कीटो डाइट चल रहा है।
1: बाकी सब ठीक?
0: बस चल रहा है।
1: बाकी सब ठीक?
0: बस चल रहा है।
1: तेरा भी बोलना।
0: मेरा भी चल रहा है। व्हाट अबाउट यू
1: भाई? लिख के दू क्या?

0: बाकी सब ठीक, बस चल रहा है बाकी सब ठीक।
1: नए साल की शुरुआत सिर्फ पॉजिटिव वाइब्स के साथ। ट्यून इन टू रेडियो नायरा 2025 की परफेक्ट शुरुआत।

आप सुन रहे हैं रेडियो नारा 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

0: पीजिए सरकार।
1: कहने थे कि मैंने शराब छोड़ दी है।
2: ओह नो।
0: मैंने तो सुना था आप दिन रात शराब में मदहोश रहते हैं।
1: रहता था, आजकल बगैर शराब के मदहोश रहना सीख लिया। नजरों से देखा।

WCMC FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 1490.

घट में जोत है, जोत में घट, जो खोजे बाहर वो भीतर ही बसे। ओम शिव गो रक्षक।

तेरे दोनों कान आज भर रहा हूं, तुझे शिव के द्वार पर कर रहा हूं। सुन, जो डमरू में गूंजे वो स्वर नहीं, स्वयं महादेव की पुकार है।

सुनते रहिए रेडियो नायरा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना,
1: नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना,
1: नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: हेल्दी लिविंग मीन्स इंडियन ट्रेडिशन. सुनते रहिए हेल्दी रहने की म्यूजिकल परंपरा ओनली ऑन रेडियो नायरा.
1: आप सुन रहे हैं नायरा 101.9 FM, 99.9 FM, SD 440 90 AM. पक्का देसी पक्का लोकल.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: आप सुन रहे हैं नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD 44 1090 AM। पक्का देसी, पक्का लोकल।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स, नॉर्थ कैरोलिना।
1: रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

भाई तेरा बस लिखत गाने हर दुनिया देती ताने वैसे इन दिक्कत पर जब गाना बजे लगे सब सर हिलाने शौकीन चाहिए टिकटे चाहे होने देना शौको ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते भर डाला ओटू इनके फेस बनते इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते ए

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: आप सुन रहे हैं नारा 101.9 FM 99.9 FM SD 44 1090 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

लाओगी लाओगी।

हरमीत, तुझे देख के पता है क्या लगता था? कि तू कुछ बहुत बड़ा करेगा। कितना पोटेंशियल है तुझ में। क्या हो गया है? कुछ बन क्यों नहीं पाया तू? What happened?

0: मेरे बस का नहीं था।
1: तो तू अपना आलस छुपाने के लिए झूठ बोलेगा?
0: हाँ, झूठ में क्या बुराई है?
1: क्या बुराई है किसी सच्चे आदमी से पूछना?
0: सच्चा आदमी तुझे नहीं पता क्या?

0: CMC FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 1490 AM.
1: तो जी हाँ दोस्तों, हम सुन रहे हैं दिल से देसी विद वैन। आप ट्यून इन कर सकते हैं रेडियो नायरा 99.9 एफएम एचडी 4 पर या 101.9 एफएम या 1419 एएम पर। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं 919-999-8595। तो आज का शो थोड़ा दिलचस्प होने वाला है। लेट मी पुल द वॉल्यूम डाउन अ लिटिल बिट बिकॉज़ आई कैन हियर मायसेल्फ प्रीटी लाउड। बिफोर वी गेट इनटू ऑल ऑफ दिस, आई वांट टू अनाउंस टू थिंग्स इम्पोर्टेंट। तो एक तो हो रहा है रेडियो नायरा की तरफ से एंड फीचरिंग एजी द डीजे विद हुकी एंटरटेनमेंट्स द भजन क्लबिंग। दिस इज द न्यू ट्रेंड नाउ। तो आजकल ये बहुत ज़्यादा डिमांड में है, पीपल आर एंजॉइंग दिस। सो इट्स हैपनिंग ऑन सैटरडे सेप्टेम्बर 5th। दिस इज प्रीटी मच ऑन द डिमांड ऑफ एवरीवन। हैपनिंग 7 से लेकर 11 बजे तक 1140 पार्क साइड मेन स्ट्रीट पर कैरी में हुकी एंटरटेनमेंट्स के थ्रू। यू नो यू कैन कॉन्टैक्ट info@radionaira.com और आप अपनी टिकट्स भी बुक कर सकते हैं। दिस इज गोइंग टू बी अ रियली गुड शो एंड द इवेंट। तो जहाँ पे भजन होगा, डिवोशन, म्यूजिक, सेलिब्रेशन, जन्माष्टमी इज ऑल्सो कमिंग। तो बहुत कुछ होने वाला है यहाँ पे, राइट? तो प्लीज यू नो गो हैड एंड बुक योर टिकट्स। दिस विल बी अ गुड शो टू हैव। और सेप्टेम्बर 5th को ही चाणक्य फेस्ट हो रहा है। तो आई थिंक द पॉडकास्ट इज ऑल्सो आउट विच इज एक्सप्लेनिंग। इट्स अ रियली गुड प्रोग्राम विच इज हैपनिंग फॉर लास्ट 4 years इन कोलैबोरेशन विद HSNC। दिस इज रियली फॉर यूथ, जहाँ पे एलिमेंट्री स्कूल से लेके हाई स्कूल तक देर इज सो मेनी कॉम्पिटिशन। इट्स लाइक आई वुड कॉल इट मोर ऑफ अ फेस्टिवल हैपनिंग, जहाँ पे स्पेलिंग बीज है, डिबेट्स है, एसेज है, कॉम्पिटिशन है। इट इज़ बीन ऑर्गेनाइज विद अ जॉब ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे यू नो देर इज ऑल्सो रियली गुड थिंग हैपनिंग फॉर चिल्ड्रंस विद स्पेशल नीड्स। उनके लिए भी बहुत कुछ होने वाला है। तो प्लीज गो एंड रजिस्टर एंड इन्वॉल्व योर किड्स, बिकॉज दिस इज ऑल अबाउट यूथ फेस्टिवल। गो ऑन अजाब AABAJ, आई रिपीट AABAJ.org, जहाँ पे बहुत कुछ बच्चों के लिए है, राइट? एंड दिस इज गोइंग टू बी हैपनिंग स्टार्टिंग फ्रॉम द मॉर्निंग अराउंड लाइक 9 o'clock HSNC मेन हॉल में होगा पीछे, सेप्टेम्बर 5th सैटरडे। दैट इज गोइंग टू बी हैपनिंग नेक्स्ट सैटरडे। एंड अगेन, जैसे मैंने आपको बताया कि भजन क्लबिंग, यू नो दिस इज ऑल्सो हैपनिंग ऑन सेप्टेम्बर 5th। तो प्लीज़ मेक योर bookings. Or again, one more thing for all the Navratri and Garba lovers, TGA is organizing the events. Bhumi Trivedi ka jo pre Navratri tha, that is going to be replaced now with Jigar, Jigar than Gadvi, because of the artist, the visa issues and all of that. But again, early birds are going on. So please, aap apni early birds tickets September 4th tak buy kijiye. These are very on a nominal cost. Uske baad mein you will be paying full price at the gates or at the booking. Abhi tickets are on discount. So, you know, if you are into Garba and if you want to go play, this is a very nice artist and it's going to be happening on the Expo Center. To bahut badi jagah hai khelne ke liye bhi. Achhi, you know, arrangements hoti hain. Last time I was there, there was about like 2,000 to 3,000 plus people in there enjoying the Garba beats and all of that. So last time I believe it was Preeti Pinky over there. But please, you know, there are good events happening. And again, bahut sare tyoharon ka mausam shuru ho gaya hai. Janmashtami is coming, Ganesh Chaturthi is coming. There is so many things happening across. So I'll do a separate show next week around all the events. Kyunki main har 2 mahine mein ek event aisa karta hun jisme, like, you know, ke we talk about all of the events which are happening up here in the area. तो चलो आज once again a warm welcome to all of you guys. पहले एक गाना वाना सुन लीजिए, then I'll be right back. थोड़ा ही गाना वाना हो जाए, then we'll open up our show today.

तो जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। वंस अगेन आप सुन रहे हैं दिल से देसी शो विद वैन। मैं हूँ आपका होस्ट, आप सभी का स्वागत है। टुडे सैटरडे एंड वी आर एट 829, ऑलमोस्ट थ्री क्वार्टर्स ऑफ द ईयर खत्म होने आ रहा है। और आप सुन रहे हैं रेडियो नारा 99.9 एफएम एचडी 4 पर। आप ट्यून इन कर सकते हैं या 101.9 एफएम पर या 1490 एएम पर। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं इफ यू वांट टू टॉक अबाउट एनीथिंग पर्टिकुलर अबाउट दिस टॉपिक व्हाट वी आर गोना टॉक अबाउट, 919-999-8595। या आप किसी भी चीज़ पर बात करना चाहते हैं तो मुझे कॉल कर सकते हैं। सो आज का टॉपिक थोड़ा एज यूजुअल तीखा है, थोड़ा पर्सनल है, राइट? तो थोड़ा अनकंफर्टेबल भी है, क्योंकि आज हम अपनी कम्युनिटी के बारे में बात करेंगे थोड़ा बहुत, कि लाइक कौन से बबल में हम जी रहे हैं, अपने थोड़ा सा बैंक बैलेंस के बारे में भी बात करेंगे। तो ऐसे टॉपिक ढूंढने थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, बट आई थिंक आई गेट अ लॉट ऑफ फीडबैक दैट एवरीबडी इज लाइकिंग इट। सो विल कीप पोकिंग द एनवेलप एंड विल कीप पुशिंग, राइट, टू सी थोड़ा सा इसके बारे में भी बात होना चाहिए। तो सोचिए अगर, राइट, आई पुट अ सिनेरियो आउट, आप एक रिलेटिव को फ़ोन कर रहे हैं इंडिया में और आप बोल रहे हैं अरे मेरा सैलरी 150,000 कमाता हूँ मैं US में। दूसरी तरफ से एकदम से आवाज़ आती है अरे वाह आप तो करोड़पति बन रहा हो, राइट, आप तो करोड़ों में खेल रहे हैं, अमेरिका में तो पैसा ही पैसा है। और ये सब एक एवरीबडी ऑल ऑफ अस गो थ्रू विद दिस, कि सबको लगता है कि यार बैकयार्ड में तो यार कम से कम डॉलर के या 100-200 के तो नोट तो कि पेड़ लगे होते हैं, बस तोड़ो और उड़ाना शुरू करो, राइट। तो लेकिन वही ये नहीं जानते कि US में 150,000 में कितना मॉर्गेज है, कितना डे केयर है, कितना बिल्स है, कितना अंकल सैम ले जाते हैं, कितने खर्चे हैं, राइट। देयर सो मेनी एक्सपेंसेस आउट देयर। लगता है ओ यू मेक 200,000 बट लाइक व्हेन एंड ऑफ द डे, मैंने बहुत लोगों को देखा है एंड आई वोंट एक्सक्लूड माई सेल्फ एज वेल, कि कई बार तो यू आर नॉट इवन एबल टू टॉप अप योर 401k, मैक्स आउट भी नहीं कर सकते बिकॉज देयर एक्सपेंसिस आप सेविंग में डालें कि इसमें डालें, राइट। तो आज का सवाल सिंपल है, कि लेकिन उसका जवाब थोड़ा सिंपल नहीं है, राइट। सवाल इज़ वेरी इजी बट जवाब सिंपल नहीं है। लाइक हम इंडियन अमेरिकन्स जो एथनिक ग्रुप से ज़्यादा कमाते हैं, राइट, लाइक सबसे एथनिक ग्रुप में हम सबसे ज़्यादा कमा रहे हैं, क्या हम सच में अमीर हैं या बस एक फास्ट ट्रेडमिल पर दौड़ रहे हैं जहाँ पे स्पीड बढ़ती है लेकिन मंजिल आपकी वहीं की वहीं रहती है, राइट। आप वहीं के वहीं स्टक है बट आपकी स्पीड, आपके खर्चे सब बढ़ते जा रहे हैं, राइट। तो थोड़े से मैं नंबर्स डालता हूँ, जैसे मैंने पहले भी शो में बताया है, राइट, ये दीज आर नॉट न्यू नंबर्स, राइट, बट अगेन जस्ट टू रिमाइंड, राइट, कि इंडियन अमेरिकन हाउस होल्ड की मीडियन इनकम $151,200 है, राइट। दैट्स अ प्रीटी सिग्निफिकेंट अमाउंट कंपेरेटिव, अगर आप देखें तो इसका हाफ भी नहीं है एवरेज नेशनल इनकम देखा जाए तो। हर एथनिक ग्रुप से हम सबसे ज़्यादा हैं और नेशनल मीडियम से हम दो गुना है, राइट। वी आर प्रेस, मैंने पहले बताया, वी आर ऑलमोस्ट डबल, राइट, फ्रॉम व्हाट अदर्स आर मेकिंग, राइट, अदर कम्युनिटीज आर मेकिंग एंड अदर नेशनली व्हाट पीपल आर मेकिंग। तो 77% इंडियन अमेरिकन्स 25 साल से ऊपर हैं, राइट, जो यहाँ पे हैं 77, राइट, दैट्स 3/4 ऑफ द 100%, राइट, के पास बैचलर्स डिग्री है या हायर डिग्री है, मास्टर्स डिग्री है या डॉक्टरेट है या PhDs एंड ऑल ऑफ दैट, राइट। होम ओनरशिप रेट 62% है लाइक इंडियन हेरिड हाउस होल्ड्स में। तो वी ऑल्सो बिलीव इन बाइंग हाउसेज प्रॉपर्टीज एंड ऑल ऑफ दैट, लेकिन ये सब नंबर सिर्फ कितना बताते हैं, राइट, ये क्या बता रहे हैं कि हम सिर्फ कमाते हैं या बचाते भी हैं, या व्हाट इज द बैलेंस बिटवीन द टू, लाइक डू वी हैव एनी चेक्स एंड बैलेंस इन प्लेस। तो आज इसी के बारे में हम सब बात करेंगे, राइट, कि भाई ये क्या चल रहा है, राइट, बिकॉज बहुत डिफिकल्ट हो रहा है फॉर फैमिलीज विद इन्फ्लेशन, विद ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर हैपनिंग। और जैसे मैं हमेशा बात करता हूँ कि लॉट ऑफ पीपल आर ऑल्सो इन बबल, राइट, कि भाई इंस्टाग्राम रील के बबल में लोग जी रहे हैं कि ये तो होना ही चाहिए, ये मस्त है, ये रेनोवेशन है, ये है, वो है, फलाना डिंका एंड ऑल दैट, राइट। सो विल टॉक अबाउट दैट, आज इसके बारे में ही हम बात करेंगे एंड आई होप वी लर्न समथिंग आउट ऑफ इट विद फैक्ट्स, फिगर्स, नंबर्स। तो चलिए थोड़े बहुत गाने वाने सुनिए, देन आई विल बी राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे पास पूरे 2 घंटे हैं आज इसके बारे में बात करने के लिए एंड विल टॉक अबाउट दिस टॉपिक, कि भाई हम सच में अमीर हैं या बस ज़्यादा
कमा के ज़्यादा खर्च रहे हैं या हम बचा भी रहे हैं? आर वी टॉकिंग अबाउट यू नो रिटायरमेंट सेफ्टी नेट, डू वी हैव लाइक यू नो दिस जॉब चली जाए तो क्या करें, राइट? इन ऑल ऑफ दीज थिंग्स. तो चलिए थोड़े गाने वाने सुनिए, देन आई विल बी राइट बैक आफ्टर द ब्रेक.

तो जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं दिल से देसी विद मैन। आज थोड़े गाने तड़क भड़क वाले हैं, मैंने थोड़ी पूरी प्लेलिस्ट ही चेंज कर दी है, तो आई होप यू एंजॉय द सॉन्ग्स टुडे। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा और आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं 919-999-8595। आज का हमारा टॉपिक है सिक्स फिगर सैलरी का एक भ्रम जो है हमें सब लोगों के अंदर, वो ज़माना जो था जब सिक्स फिगर के लिए लोग वेट करते थे, आज वो सिक्स फिगर की वैल्यू क्या रह गई है, राइट। सो विल ब्रेक दिस मेथ टू फिगर आउट कि भाई यू नो इज दिस इनफ, क्या हम यू नो आर वी ट्रूली रिच विद सिक्स फिगर और आर वी जस्ट यू नो सर्वाइविंग, क्योंकि आज का टाइम दौर सब चेंज हो चुका है कि भाई आप 100,000 कमाइए या 200,000 कमाइए, आपके खर्चे भी उतने सामने खड़े हैं, तो लाइफ हैज़ चेंज्ड अ लॉट। जो काम पहले 100,000 में होता था वो आज 200 में भी नहीं हो रहा, राइट। तो विल टॉक अबाउट ऑल ऑफ दिस। तो चलो पहला सेगमेंट शुरू करते हैं, राइट। तो द फर्स्ट वन इज प्रीटी फनी, राइट, कि भाई क्या आप इंस्टाग्राम के अमीर हैं या एक्सेल शीट के अमीर हैं, राइट। लेट्स चेक व्हाट इट इज। चलिए थोड़ा सा एक गेम खेलते हैं, राइट, कि मैं आपको दिखाता हूँ दो वर्जन एक जिंदगी के। एक पहला वर्जन है इंस्टाग्राम वर्जन, जहाँ पे नया कंस्ट्रक्शन का घर कैप्शन पे डाला है ब्लेस्ड एंड ग्रेटफुल ब्यूटिफुल होम, टेस्ला की डिलीवरी आ रही है, रील्स विद म्यूजिक, कैंकून बीच पे फोटो, दिवाली पार्टी पे ड्रोन शॉट्स, फायरवर्क्स, ये सब तो चल ही रहा है, राइट, एंड विच शोज लाइक यू नो द सिग्निफिकेंस ऑफ वेल्थ एंड हाउ वेल बींग यू आर डूइंग एंड ऑल ऑफ दैट। फिर दूसरा वर्जन आता है महीने के एंड पे, जो है एक्सेल शीट वर्जन, राइट, कि भाई उसमें देखते हैं कि भाई मॉर्गेज पेमेंट कितना निकला, डे केयर में कितना गया, क्रेडिट कार्ड का बिल मिनिमम पेमेंट से कितना भरा, 401 के कंट्रीब्यूशन में कम क्यों गया, ये महीने कैश बहुत टाइट है, ऑल दिस कॉन्वर्सेशन स्टार्ट्स, राइट। तो इंस्टाग्राम पे कोई भी नहीं उस टाइम पे लिखेगा कि भाई आज $2,400 डे केयर में दे दिया, कोई स्टेटस में नहीं लगाएगा कि आज EMI के बाद बचा ही कुछ नहीं, हम सब यू नो सिर्फ हाईलाइट में जी देख रहे हैं चीज़ों को, राइट। बिहाइंड द सीन्स का बजट कोई नहीं बताएगा आपको, बिकॉज दीज आर द थिंग्स ऑफकोर्स यू आर नॉट गोना शो इट ऑन सोशल मीडिया, पर ये रियलिटी हो चुकी है आज के टाइम पे कि भाई जस्ट हमें हमारी मोस्ट ऑफ द पेमेंट्स तो ऑटो पेमेंट्स पे होती हैं आजकल यहाँ पे, बट जस्ट लुक एट योर इलेक्ट्रिक बिल। एक सिंगल फैमिली घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑलमोस्ट $400 तक पहुँच चुका है। इमेजिन कीजिए, वो एक कार की एक पेमेंट होती थी, आज सिर्फ आपके घर का इलेक्ट्रिक बिल रह चुका है, राइट। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, राइट, दो कैरेक्टर्स डालते हैं, नाम में बदल दूंगा, होपफुली आपका ये नाम ना हो, बट यू नो आपको नहीं जानता, बट आई एम जस्ट पुटिंग दिस नेम, राइट। तो नाम रखते हैं रोहन और सिमरन, राइट, दोनों IT प्रोफेशनल, कंबाइंड इनकम है उनकी 220,000 to 250,000, राइट। इंडिया में सुना होगे तो रिएक्शन क्या आएगा, अरे भाई आप तो सेट है यार, आप तो करोड़पति हैं, महीने में इतना कमा रहे हैं तो फिर तो साल का तो भूल ही जाइए, राइट। आई मीन दैट्स ट्रू बिकॉज दे डोंट नो व्हाट द रियलिटी हियर इज, खर्चे क्या हैं, लेकिन आप टैक्स निकाले, राइट, राइट ऑफ द बैट लाइक यू आर टॉकिंग अबाउट मेजोरिटीज ऑफ द पीपल आर इन लाइक 22 to 25% टैक्स ब्रैकेट, राइट। तो और 20% तो पकड़ ही लीजिए, तो आपके 40,000 तो वहीं चले गए सीधा बाहर, राइट। फिर मॉर्गेज निकालिए, प्रॉपर्टी टैक्स निकालिए, क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स निकालिए, यू नो डे केयर के खर्चे निकालिए, इंडिया की ट्रिप निकालिए, पेरेंट्स को अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं बैक होम इंडिया वो निकालिए, अचानक आपका देखिए 220,000 उतना बड़ा नंबर नहीं लगेगा आपको, आप बोलेंगे कि यार क्या कमा रहे हैं हम, कुछ है ही नहीं हमारे हाथ में, राइट। एंड देन ऑल्सो यू आर ग्राइंडिंग 24/7। तो ये आज का एपिसोड का कोर पॉइंट है, राइट, कि इनकम और वेल्थ दो अलग चीज़ है, राइट, कि भाई इनकम करना विच इज़ लाइक अ पे चेक टू पे चेक वर्सेज having a wealth in hand is a complete different thing, right? And wealth generates over the generation or over the long period of time. Agar income aapko regular aati rehti hai, isme bahut farak hai. To ज़्यादा कमाना का मतलब क्या बचाना नहीं होता कि क्या है, राइट, कि भाई इफ़ यू अर्न मोर दैट डजंट मीन यू ऑटोमेटिकली सेव मोर एंड यू हैव अ लैविश एंड अ ब्यूटीफुल लाइफ। अभी आज के ज़माने में यू आर प्रीटी मच जस्ट यू नो क्रूजिंग थ्रू, कि भाई ये सब चीज़ें तो अभी नॉर्मल हो ही गई है, खर्चा तो करना ही पड़ेगा, राइट। और अगर खर्चे के मामले पे आए तो कितने हैं बिल्स ही आप देख लीजिए कितने हैं, राइट। तो यू नो आपके हिसाब से
रिच होने का मतलब क्या है, राइट? लाइक थिंक अबाउट इट, आस्क योरसेल्फ, लाइक 200K की सैलरी, या वो इंसान जो मंडे को जॉब जाने से पैनिक नहीं कर रहा, राइट? थिंक अबाउट दिस के भाई चिल लाइफ है, यू नो, देखेंगे मंडे को जाने में ऑफिस में कोई टेंशन नहीं है. आर यू एंजॉइंग रियल योर लाइफ, और आर यू वरीड अबाउट कि भाई ये बिल्स के चक्कर में है, अगर जॉब चली गई छूट गई तो कैसे ये सब भरेंगे, राइट? तो दिस इज नॉट सिग्निफिकेंट और इक्विवेलेंट टू यू बीइंग रिच. यू आर जस्ट सिंपली ड्रैगिंग योर सेल्फ इनटू बिल्स एंड हैविंग अ नॉर्मल लाइफ, क्योंकि जैसे ही पैसा आया तो हमने होंडा अकॉर्ड छोड़ के टेस्ला उठा ली, जैसे ही घर आया तो टाउन हाउस छोड़ के, पैसा आया तो सिंगल फैमिली ले लिया, और फिर बाद में हम वो लोन के और वो डेट के सर्कल में, विशियस साइकिल में घूम रहे हैं. एंड देन अगेन जो वर्क स्पैन होता है एक इंसान का, वो है ऑलमोस्ट 30 to 60 years, राइट? लाइक 30 years की उम्र में आप आइडियली आज के टाइम पे एक प्रॉपर करियर चुन पा रहे हैं, सेटल हो पा रहे हैं, और उसी 30 years में फिर आपको, जब आप 30 के होते हैं तो फिर आपको घर लेना है, शादी करनी है, बच्चों को स्कूल भेजना है, एंड देन यू वांट टू एंजॉय योर लाइफ एज वेल एंड रिलैक्स एंड चिल. और 50 के बाद में तो वैसे ही आपका रिवर्स घेर लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसके बाद में तो you stop having making new friends and having new things, because at that point the life is changing, your kids are now going to college, right? So sochiye, right, thoda iske bare mein ki paisa hai ya nahi hai, ya ye ek frictional number ho chuka hai jo hum sirf savere uth ke bank mein kholte hain, dekhte hain, are yaar okay barobar sab kuch padha hai theek thaak, and then we shut down the app and we move on. To sochiye zara iske bare mein, milte hain gaane wane ke baad mein, and we'll keep talking about this.

तो जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं दिल से देसी विद वैन. आप यू कैन ट्यून योर लिसनिंग टू रेडियो नाइट और 99.9 एफएम एचडी 4 1490 एएम या 101.9 एफएम. आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं 919-999-8595 पर. तो आज हम बात कर रहे हैं सिक्स फिगर सैलरी की और उसका जो जोश और रुतबा है और क्या रह गया है, राइट. तो चलिए वी आर गोना मूव ऑन टू द सेकंड वन, राइट. सो दो बजट एक सैलरी, राइट, रिमिटेंस का सच. इसीलिए मैंने ये गाना बजाया अपने देश का एंड ऑल ऑफ दैट. तो यू नो कि भाई अब बात करते हैं लाइक एक ऐसी चीज़ की जो हम बहुत लोग खुल के डिस्कस नहीं करते, बट फैमिली को इंडिया में जो पैसे भेजने हैं, राइट, मेजोरिटी ऑफ द पीपल आर डीलिंग विद दिस एंड यू नो ऑफ कोर्स वी आर ऑल पैशनेट टू टेक केयर फॉर लव्ड वंस, बट ये सिर्फ एक लाइन आइटम नहीं है दोस्तों, राइट. लाइक ये एक पूरा दूसरा बजट बन जाता है आपका. बहुत से इंडियन अमेरिकन हाउस होल्ड में ये चलते ही आ रहा है और चलते ही रहेगा, और अपनी अमेरिकन जिंदगी के साथ साथ ये भी एक लोगों ने चीज़ों को जोड़ना शुरू कर दिया है, राइट. तो सोचिए, राइट, एक इंजीनियर है यहाँ पे जो 401k में कंट्रीब्यूट कर रहा होगा और उसको उसी महीने अपने मॉम डैड के लिए या मेडिकल बिल भरना पड़ रहा है या एक उसकी सिस्टर की शादी है उसके लिए पैसे भेज रहे हैं या व्हाटएवर दोज इवेंट्स आर, राइट, लाइक व्हिच इज हैपनिंग. अब ये क्या हो गया, राइट. ये सिंपल सी बात हो गई कि आपने दो बजट मैनेज कर लिए, राइट, एक ही सैलरी के अंदर. तो नाउ वी आर हैविंग टू हाउसहोल्ड्स रनिंग फ्रॉम अ सिंगल सैलरी. ये कोई छोटा नंबर नहीं है, राइट. अगर आप देखें पूरे यूएस में इंडिया को जाने वाले जो पैसे हैं उसको पूरे देश के रेमिटेंस या बहुत बड़ा हिस्सा है इसका. लाइक इफ यू लुक इनटू द नंबर इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स, तो अगर आप 2024 में इंडिया में इंडिया ने दुनिया में सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस रिसीव की, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा, राइट. व्हाट डज इट से, ऑफ कोर्स दिस इज़ अ गुड थिंग दैट वी आर टेकिंग केयर ऑफ आवर लव्ड वंस फैमिलीज, मगर यहाँ पे आपकी क्या सिचुएशन होती है वो काम करके नंबर बताऊंगा तो आप हिल जाएंगे. $137 बिलियन वॉज सेंट, और मैं ये 2024 का नंबर दिखा रहा हूँ आपको, राइट, जो मेक्सिको

और पूरा फिलीपींस से काफ़ी ज़्यादा है, राइट? बिकॉज दीज आर द कंट्रीज लाइक टॉप मोस्ट कंट्रीज वेयर द मनी इज बीन सेंट. सेंडिंग कंट्रीज में यूनाइटेड स्टेट्स नंबर वन है, राइट? तो अकेले यूनाइटेड स्टेट्स से $103 बिलियन दुनिया भर में भेजा गया 2024 में. $103 बिलियन इज बीन सेंट आउट, राइट? आरबीआई का अगर आप सर्वे देखें उसके मुताबिक, तो उससे आने वाले पैसे इंडिया का टोटल रेमिटेंसेस का रफली 23% हिस्सा बन जाता है, राइट? अगर जो टोटल जो पैसा आ रहा है 23% इज जस्ट रेमिटेंसेस कमिंग इन डॉलर्स, विच इज 1/4 कंट्री का जो पैसा डॉलर्स में है वो रेमिटेंसेस से आ रहा है, राइट? मतलब यू नो ट्राइंगल एरिया में अगर हम देख रहे हैं तो बहुत से घर इस नंबर का एक छोटा सा रियल हिस्सा भी है, बिकॉज यू नो लॉट ऑफ पीपल आर मैनेजिंग दिस. सो ये गिल्ट का सवाल नहीं है, राइट? अपनी फैमिली को सपोर्ट करना, देयर आर वैल्यूज इन ऑल ऑफ दीज थिंग्स, लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग में इसका जगह होनी चाहिए, राइट? कि भाई अगर आप ये कर रहे हैं तो आपके पास सरप्राइज एक्सपेंसेस की तरह नहीं होना चाहिए. दिस इज़ अ प्लान्ड मनी विच यू आर गोइंग टू बी अर्निंग एंड सेंडिंग. ये एक आपकी लाइन आइटम बन चुकी है अब, विच इज शुड गोइंग टू बी अकाउंटेड फॉर. अगर आपकी जो सिक्स फिगर सैलरी के लिए अगर आप शूट कर रहे हैं तो दिस इज़ वन ऑफ द एक्सपेंसेस फॉर यू विच यू गोइंग टू बी हैंडलिंग. तो यू नो कितने घर भेज रहे हैं, रेगुलर मंथली सपोर्ट के लिए भेज रहे हैं या सिर्फ इमरजेंसी के लिए भेज रहे हैं, और ये आपके बजट में पहले से प्लान होता है या नहीं, थिंक अबाउट दिस, राइट? गाने वाने सुनिए, देन विल बी राइट बैक.

तो जी हाँ दोस्तों, आई होप यू आर एंजॉइंग द सॉन्ग्स। आप सुन रहे हैं दिल से देसी विद वैन, और आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा और 99.9 FM HD4 पर या 101.9 FM और 1490 AM पर आप किसी पे भी ट्यून करके सुन सकते हैं। और यू कैन ऑल्सो लिसन इन ऑन द ऐप, यू कैन ऑल्सो कॉल मी ऑन 919-999-8595। वंस अगेन आज हम बात कर रहे हैं सिक्स फिगर सैलरी का जो मिथ है, राइट, जो भ्रम है कि भाई बहुत बड़ी चीज़ है सिक्स फिगर सैलरी में काम करना, बट उसकी रियलिटी क्या है, लोग कैसे उसमें जूझ रहे हैं, राइट, कि भाई आर यू रियली अ मिडिल क्लास और यू कॉल योरसेल्फ और डू यू फील सेफ और डू यू फील रिच और वेल्थी, क्या है, राइट, ये सब चीज़ें। तो चलो नेक्स्ट पे चीज़ें पे बात करते हैं कि लाइक भाई ना ये गोल्डन वीज़ा, राइट, तो आई कॉल इट लाइक गोल्डन हैंड कप्स, ये सोने की हथकड़ियाँ हैं, राइट। तो अब एक टॉपिक जो बहुत ज़रूरी है, पीपल डोंट टॉक अबाउट दिस, पार्टीज़ में, गैदरिंग्स में, कहीं पे भी बहुत ज़्यादा बात नहीं होती, पर ये है इमिग्रेशन स्टेटस, राइट, का फाइनेंशियल लाइफ पे क्या असर होता है, राइट, कि भाई बहुत लोग इससे अब गुजर रहे होंगे इस टाइम पे, बिकॉज इमिग्रेशन इज़ वेरी टफ राइट नाउ, जो हालात है वो बहुत मुश्किल चल रहे हैं इस टाइम पे। तो कई फैमिलीज के लिए ये पूरी एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है एक एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीज़ा पे खड़ी है, जो गई तो सिर्फ पेचे की नहीं जाता, स्टेटस रिस्क में आ जाता है और बहुत सारी चीज़ें उसके साथ जो जुड़ी हैं वो सभी कुछ रिस्क में आ जाती हैं विद इन अ मैटर ऑफ डेज एंड विद इन अ मैटर ऑफ टाइम। और ये कोई छोटा इशू नहीं है, राइट, ये एक जनरेशनल स्केल है जो बैकलॉग बन चुका है, राइट, कि भाई इतना इशू है इसके अंदर इन बेस चीज़ों के ऊपर कि मैंने इतनी चीज़ें देख ली है और केसेस देखे हैं कि एक चीज़ तो आई विल डेफिनेटली से कि नेवर बाय और मेक फाइनेंशियल डिसीजंस बेस्ड ऑन योर जॉब्स टुडे। प्लीज़ अगर आप कोई घर लेने जा रहे हैं या कुछ करने जा रहे हैं तो आज आपकी जॉब है उसके बेसिस पे कभी ऐसे बड़े डिसीजन मत लीजिए, बिकॉज इट टेक्स यू नो 24 आवर्स फॉर समवन टू सेंड यू दैट ईमेल दैट वी डोंट नीड यू टुमारो। और अगर आपने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया है कि अरे जॉब तो चली रही है, एवरीथिंग इज हंकी डोरी, पीपल लव यू एट जॉब, योर बॉस लाइक्स यू, रेटिंग्स मस्त हैं, ये वो, इट डजेंट टेक एन आवर फॉर द यू नो कंपनीज टू कट द बजट एंड यू नो गेट रिड ऑफ एन एम्प्लॉई, राइट। तो बहुत सोच समझ की ये चीज़ है, राइट। सो लेट्स लुक एट द फैक्ट्स, राइट, ये ग्रीन कार्ड का बैकलॉग फैक्ट्स क्या है, आई मीन यू कैन जस्ट गूगल इट एंड सर्च इट एज वेल, पर ये नंबर्स दैट शॉक यू, राइट, कि भाई दिसंबर 2025 तक करीब 1 मिलियन इंडियन एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ग्रीन कार्ड्स बैकलॉग में वेट कर रहे हैं, राइट, जो एक पूरी क्यू का 79% है। वी आर होल्डिंग अप 80%, आवर कम्युनिटी इज होल्डिंग अबाउट 80% ऑफ दिस बैकलॉग, राइट। एक इंडियन एप्लीकेंट जो 2026 में EB2 कैटेगरी में फाइल कर रहा है उसके लिए एस्टिमेटेड वेट टाइम 179 ईयर्स है, हो सकता है, ऑफकोर्स यू नो समटाइम्स दे माइट एक्सपायर, बट 179 ईयर्स है। उसके बेसिस पे अगर आप ये डिसीजन ले रहे हो तो आप कहाँ पे खड़े हैं सोचिए जरा। EB3 कैटेगरी में ये सेम एस्टिमेट 38 ईयर्स है, 38 ईयर्स में यार इंसान का क्या होगा कल पता नहीं है, और आप सोचिए कि इतना बड़ा डिसीजन ले रहे हैं इन वीज़ास और इसके चक्कर में, राइट। EB2 इंडिया में EB2 इंडिया ने लाइक अपना 2026 का जो एनुअल कैप है वो ऑलरेडी हिट कर दिया है सितंबर 2026 तक, तो ये अनअवेलेबल है इस टाइम पे बिकॉज द कोटा इज बिन हिट। चाहे जितनी भी फीस लगा रहे हैं, सब कुछ लगा रहे हैं, बट स्टिल पीपल आर अप्लाइंग, वो सोच रहे हैं कि 100,000 देखिए अगर 500,000 बनता है ओवर द कोर्स ऑफ 36 ईयर, वो इस तरीके से कैलकुलेट कर रहे हैं, मगर ये नहीं सोच रहे हैं कि भाई इसके साथ में कितने रिस्क आप लेके चल रहे हैं, राइट। लाइक जैसे आप देखिए कि फर्स्ट जनरेशन जो इमिग्रेंट हेरिड हाउस होल्ड हैं उनकी मीडियन इनकम 156,000 है, जो एक्चुअली जो US बोर्न इंडियंस हैं हाउस होल्ड उसकी 120,000 है से लाइक यू नो है, तो वो कितनी ज़्यादा है, मतलब ये बैकलॉग उन लोगों को इफेक्ट कर रहा है जो ऑलरेडी यू नो सबसे ज़्यादा कमा रहे हैं, राइट, बट दे आर अर्निंग मनी बट दे डोंट हैव स्टेबिलिटी टू स्टे। तो यहाँ पे लाइक यू नो एक सवाल है ऐड करने वाला कि भाई यू नो क्या आप मिडिल क्लास कह सकते हैं अपने आप को, और अगर आपकी यू नो पूरी ज़िंदगी एक वीज़ा स्टैम्प को एक्सपायर होने पर खड़ी है तो हाई इनकम के साथ लाइक यू नो आपके पास कितना लो कंट्रोल है अपनी लाइफ के ऊपर कि लाइक इनकम हाई है बट वी रियली डोंट हैव एनी कंट्रोल ओवर इट। यू नो एक सिंपल से लाइक यू नो अगर इफ़ यू डू अ रैपिड फायर कि भाई यू नो H1B पे यू नो
कुछ साल यू नो लोगों को ग्रीन कार्ड वेट करना पड़ता है और ऑटोमेटिकली आ जाता है। रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है, राइट। बैकलॉग प्रोसेस टेक्स डेकेड्स ओवर डेकेड्स टू बी प्रोसेस्ड, और कल को पता नहीं यहाँ पे क्या कोई नवा रूल आ जाए। यू नो आज ही अभी ही मैं एक वो पढ़ रहा था, लाइक व्हाइल आई वाज लिसनिंग टू द सॉन्ग, कि भाई वो EB4 कैटेगरी जो होती है स्पाउसल वीज़ की, उनके एम्प्लॉयमेंट वीज़ कैंसिल कर रहे हैं। तो इमेजिन अगर वो लॉ पास हो गया तो जो आपके स्पाउसेस हैं वो काम नहीं कर पाएंगे, इमीडिएटली योर इनकम वेंट डाउन, राइट। मिथ है दूसरा कि भाई ग्रीन कार्ड मिलने से सब कुछ यू नो टेम्प्रेरी है, इसलिए घर मत लो, राइट, कि ग्रीन कार्ड जब तक नहीं आता तब तक घर मत लो। बहुत सी फैमिली अगर आप देखेंगे, और मैं पर्सनली जानता हूँ, जो वीज़ास पे उन्होंने घर लिए हुए हैं, राइट, और the minute that happens, you know, it's a shock, क्योंकि mortgage ले रखी है, सब कुछ ले रखी है। I came across 2 or 3 families who overnight, just without even informing the bank or anything, they packed their bags and left because jobs नहीं थी, they couldn't sustain, they winded up everything and they just have to leave। और बाद में आपका you know इतना सारा वो आपका credit खराब होगा, God knows क्या क्या वो bank आपके पास कैसे पैसे पहुँच लेने आएगी, but you're putting yourself in so much of risk due to this, right? तो backlog सिर्फ नए immigrants का problem है, right? ऐसा नहीं है, right? ये उन लोगों को भी affect कर रहा है जो यहाँ 10-15 साल से settled हैं और वो high income कमा रहे हैं और वो भी इस backlog के चक्कर में फंसे हुए हैं। तो यू नो सोच के समझ के करिए ये सब चीज़ें जो करने जा रहे हैं, बिकॉज यू नो ये एक 6-figure का बस एक ये मिथ ही है जो हम मैं इसके बारे में बात करना चाह रहा था आज, कि भाई कितनी चीज़ें लोगों की इसके साथ में जुड़ी हुई हैं। यू नो नो मैटर व्हेन वी सी दिस फ्लैशी थिंग्स, इट डजेंट मीन एनीथिंग अनलेस यू आर नॉट लाइक आराम से आप जी पा रहे हैं, शांति से जी पा रहे हैं, बिकॉज यू नो मनी आज उसकी कुछ वैल्यू नहीं रह गई इतनी ज़्यादा। तो गाने वाने सुनिए, दे विल बी राइट बैक एंड विल कीप टॉकिंग अबाउट दिस अ लिटिल बिट मोर।

0: listening to WCMC-FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270DT Durham, 101.9 FM, WDUR Durham, 1490 AM.
1: तो जी हाँ दोस्तों, जैसे आप सुन रहे हैं, आपको बताया गया है कि आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा ऑन 99.9 एफएम HD4 पर और 101.9 एफएम या 1490 एएम पर। तो जो ये जिंगल बज रहा था वो यही कह रहा था कि आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर। आप सुन रहे हैं एक शो जिसका नाम है दिल से देसी विद मैन। वी मीट एवरी सैटरडे। एक घंटे पूरे हो चुके और आज हम बात कर रहे हैं सिक्स फिगर सैलरी का जो मिथ है, राइट? आई मीन 100,000 हो, 2 हो या 3 हो या 4 हो, डजंट मैटर, मगर सभी लोग इसी जंगल में फंसे हैं और मैं सब खर्चे गिना रहा हूँ, राइट, कि ये सब चीज़ों में हम कैसे फंसे पड़े हैं। तो अब बात करते हैं मिलियन डॉलर घर की, राइट, और मिलियन डॉलर वाला आदमी जो है, राइट। तो एक अजब यू नो आजकल एक यू नो 700,000-800,000 के यू नो यहाँ तक के 1 मिलियन तक के घर नॉर्मल कॉन्वर्सेशन हो चुकी है, राइट, एक घरों के लिए जो एक घर का हिस्सा बन चुका है, लाइक यू नो व्हेन स्पेशली यहाँ ट्राइंगल में, आप कोई भी यू नो वेल सेटल्ड सिटी में जाइए कि लाइक यू नो दिस इज बिकमिंग द नॉर्म। मैं कितने पॉडकास्ट और ये सब देख रहा था, यहाँ पे सब बता रहे हैं इकोनॉमिक्स के, लाइक आने वाले थोड़े सालों में तो इट विल बी, आई मीन अभी ही ऑलरेडी है कि भाई जो नेक्स्ट जनरेशन के लिए घर लेना ही इम्पॉसिबल हो जाएगा, बिकॉज इट इज़ सो एक्सपेंसिव नाउ, रीच के बाहर चला गया है ये सब चीज़ें, राइट, बिकॉज इट्स बीन सो हाईली इन्फ्लेटेड। और जब मैं कहता हूँ कि लेकिन हमने मिलियन डॉलर घर लिया, तुरंत आपके किसी के भी दिमाग में आता है, ओ वाह, आप तो मिलियनर बन गए हैं, राइट, पीपल थिंक लाइक दैट, राइट। लेकिन जरा रुको, राइट, यू थिंक अबाउट इट, अगर आप एक घर की वैल्यू 100 मिलियन डॉलर है, आपकी मॉर्गेज बैलेंस 800,000 है, तो आपके पास एक्चुअली में कितना है, कितना पोर्शन आप घर का ओन कर रहे हैं, दैट्स व्हाट मैटर्स रियली, राइट। इज दैट 1 मिलियन डॉलर हाउस पेड ऑफ? इट्स नॉट। और वो 800,000 के ऊपर 7% पे आप लगा लीजिए, क्या मॉर्गेज बनती है। तो अगर एज अ स्पाउस ऑल्सो एज अ कपल यू आर पेइंग द मॉर्गेज, एक की भी जॉब गई, तो आप सोचिए आपका क्या हालत होगा। आपके पास एक्सपेंसिव एसेट है, लेकिन उसके साथ में उतनी ही एक्सपेंसिव लाइबिलिटी आप कैरी कर रहे हैं लाइफ में। तो और सिर्फ यू नो मॉर्गेज ही नहीं, राइट, उसके ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स लीजिए, HOA, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ये सब चलता रहेगा खर्चा जो आपके घर में, लाइट, बिजली बिल, इंश्योरेंस, फलाना ढींका, जिस द हाउस कम्स विद अ टन ऑफ बिल्स, राइट। तो एक और ये एक बार का एक्सपेंस नहीं, इट्स मंथली और ईयरली एक्सपेंस, यू आर टॉकिंग अबाउट लॉन केयर एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, राइट। तो एक ऑनेस्ट सवाल है, लाइक कभी कभी हम घर जरूरत से ज़्यादा ही बड़ा ले रहे हैं, लेने की कोशिश करते हैं सिर्फ कंपैरिजन के चक्कर में कि भाई उनके पास 4 बेडरूम है, उनका स्कूल डिस्ट्रिक्ट अच्छा है, तो चलो हम भी वैसा कर लेते हैं और थोड़ा स्ट्रेच कर लेंगे यू नो बजट को। बट ये एवरी स्ट्रेच जो है, राइट, ये अमेरिकन ये अमेरिका में सबसे ज़्यादा डेंजरस लाइन है, राइट। थोड़ा सा स्ट्रेच कर लेते हैं या थोड़ा सा स्ट्रेच कर लेंगे, बजट को देख लेंगे, मगर ये चीज़ ले लेते हैं आज, क्योंकि हर स्ट्रेच के साथ आता है आपका यू नो बड़ा मॉर्गेज, बड़े बिल्स, और उसी के साथ में आपकी हो जाती है कम सेविंग्स साथ में, राइट, और आप ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हो उस जॉब के ऊपर जिसकी कोई गारंटी नहीं है। तो अगेन आई एम नॉट हियर टू स्केयर एनीबॉडी ऑन दिस कॉल, बट आई जस्ट वॉन्ट टू शो अ रियलिटी कि भाई बहुत लोग इसी जंगल के अंदर फंसे पड़े हैं। बट अगेन यू नो द कोर पॉइंट इज के क्या सिक्स फिगर सैलरी जो है, इज इट गिविंग रियली योर कम्फर्ट और बहुत ही आनंददायक जिंदगी हो रही है हमारी सिक्स फिगर सैलरी के साथ में? नहीं, हम उतने ही देखा देखी में, शोशेबाजी में घुस रहे हैं और उतनी ही ज़्यादा चादर फैला रहे हैं, हमारे पैर जिसके अंदर रहें उससे बड़ी करने जा रहे हैं, बिकॉज सम थिंग्स यू डोंट इवन हैव कंट्रोल ऑन नाउडेज, यू हैव टू स्पेंड। तो यही है, और सुनते रहिए गाने वाने, देन आई विल बी राइट बैक आफ्टर द ब्रेक।

तो जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं दिल से देसी विद बैन, और आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 FM HD4 पर। मुझे कॉल भी कर सकते हैं 9199998595। हम ऑलमोस्ट आवर एंड हाफ 15 मिनट्स तक पहुंच चुके हैं। तो हम बात कर रहे हैं सिक्स फिगर सैलरी की, राइट, जो एक मिथ है, राइट। लेट्स कंटिन्यू। तो नेक्स्ट है, आई वांट टू टॉक अबाउट इज लाइक दो गाड़ी एक डे केयर का बिल, राइट। तो सबर्ब्स में लग्जरी कार जरूरत नहीं है, ये दो गाड़ी हाउस होल्ड में नॉर्मल बात बन चुकी है। लेकिन कार का असली कॉस्ट सिर्फ मंथली पेमेंट नहीं होता, राइट, उसके साथ में इंश्योरेंस है, गैस है, मेंटेनेंस, टायर, रजिस्ट्रेशन, यू नेम इट, राइट। कार कम्स विद, देयर इज अ रीजन व्हाई पीपल से कार इज अ लायबिलिटी, राइट, बिकॉज यस इट गिव्स यू लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स टू टेक यू फ्रॉम प्लेस वन टू बी, बट इट ऑल्सो कम्स विद द सेम एक्सपेंसेस, राइट। तो सवाल ये कि हम कार ट्रांसपोर्टेशन के लिए खरीद रहे हैं या आइडेंटिटी के लिए, राइट। नाइस कार में रखना कुछ अच्छी कार होना कुछ गलत बात नहीं, अगर आप अफोर्ड कर सकें तो, राइट, एंजॉय करो बिंदास, राइट, इफ़ यू हैव मनी स्पेंड इट। बट प्रॉब्लम तब होती है जब आपकी ईएमआई आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम खा रही है। अगर आप नॉर्मल डेटा उठा के देखेंगे तो आज के टाइम पर अगर आप बेसिक सी कार भी लेकर अगर आप फाइनेंस कर रहे हैं तो मिनिमम आपकी जो इंस्टॉलमेंट बन रही है 0% इंटरेस्ट पे भी अगर आप ले रहे हैं या इंटरेस्ट मिनिमम पे ले रहे हैं तो 500 के ऊपर बनती है, राइट। अगर आप सोचिए अगर आप वही लग्जरी में जा रहे हैं तो आप यू आर टॉकिंग अबाउट $700-800 अ मंथ, उसके ऊपर आपका गैस और ये सब कुछ देख लीजिए, राइट। तो आप बात कर रहे हैं कि उस एक्सपेंस की जो लोगों को बहुत सरप्राइज सरप्राइज करता है जब कार लेने के बाद में, और हम देख तो लेते हैं अरे भाई इतना लगेगा, बट व्हेन ऑल यू ऐड ऑल ऑफ दीज थिंग्स अप और नॉट कर स्पेशली एवरी ईयर यू ऑल्सो पेइंग द एक्सपेंस ऑफ द कार, यू आर ऑल्सो पेइंग अ प्रॉपर्टी टैक्स ऑन टॉप ऑफ दैट। तो थिंक अबाउट इट कि ये सब भी एक सिक्स फिगर सैलरी को खाने वाले खर्चे हैं। अभी तो आपने, मैंने कुछ भी नहीं गिनाया जिसमें आपने अपने ऊपर एक रुपया भी लगाया हो अपने आप को एंजॉयमेंट के लिए। ये तो सब बेसिक एसेंशियल्स की जो खर्चे मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। अब बात करते हैं उस एक्सपेंस की जो लोग लोगों को सरप्राइज करता है डे केयर यहाँ पे आकर, राइट, क्योंकि इंडिया में तो चलो फैमिली सपोर्ट सिस्टम होता है, पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स हैं, पर यहाँ दो पेरेंट अगर काम कर रहे हैं, फैमिली दूर है, पेड चाइल्ड केयर एक सबसे बड़ा एक हेडेक है और इतना बड़ा एक्सपेंस है ये, विच इज़ नॉट ईजी। तो राइट, अगर आप डे केयर के साथ में डे केयर के साथ आते हैं, लेकिन दीज एक्सपेंसेस आर वेरी हाई, यू आर टॉकिंग अबाउट $2,500 मिनिमम अ मंथ, जो प्रीटी मच आपकी हाफ ऑफ द कई लोगों की सैलरी बनती है आफ्टर टैक्स में, राइट। और डे केयर के साथ में आती है एक्टिविटीज, समर कैंप, ट्यूटरिंग, स्पोर्ट्स, बर्थडे पार्टीज, ये सब को अगर आप जोड़ लेंगे, राइट, तो एक ऑलमोस्ट मॉर्गेज बन जाएगी आपकी, विच इज़ पैरेलल टू योर कार, योर डे केयर एंड ऑल ऑफ दिस, उससे भी कई बार ज़्यादा हो सकती है, राइट। तो हर पेरेंट्स को ये सोचना जरूरी है कि क्या मुझे बच्चों को दे वॉन्ट टू गिव एवरीथिंग बेस्ट, बट बिल्कुल सही है, लाइक देर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, राइट, यू आर नथिंग डूइंग रॉन्ग विद दिस, लेकिन बेस्ट देना और सब कुछ देना ये दोनों जरूरी है क्या, राइट, कि कभी कभी बच्चों को सबसे बेस्ट गिफ्ट मिल जाए तो वही है कि जो आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, राइट, दैट इज़ द बेस्ट गिफ्ट फॉर यू किड्स। ना ही कि जो ऐसी गिफ्ट मिले जो रात को पेरेंट्स गिफ्ट तो दे रहे हैं पर उसी टाइम पे रात को वो लड़ रहे हैं पैसे के बजटिंग के ऊपर। तो थिंक अबाउट इट, विल कीप टॉकिंग मोर। आप गाने वाने सुनिए और हम सिक्स फिगर सैलरी को डीबंक करते रहेंगे।

तो जी हाँ दोस्तों, आज जोरदार गाने बज रहे और आप सुन रहे हैं दिल से देसी विद्वान। हम बात कर रहे हैं सिक्स फिगर सैलरी की और उसको मिथ को बर्स्ट करने की कि भाई यू नो डज द सिक्स फिगर सैलरी इज रियली अ बिग थिंग, राइट। तो नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट लाइक यू नो 401k खोला पर मैं रिटायर कभी नहीं हुआ, राइट। व्हाट डज दिस मीन, राइट। अमेरिका में एक बहुत ही फेमस सवाल है, तुम ना तुम्हारे 401k में कितना पैसा पड़ा है, राइट। लाइक ये बहुत लोग पूछते होंगे, बहुत इमिग्रेंट्स के लिए शुरू के सालों में ये बहुत कन्फ्यूजिंग होता है बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि ये सब क्या है, HSA एंड IRA एंड रॉथ IRA एंड 401k और ये एम्प्लॉयर मैच, ये सब टर्म्स समझने में ही बंदा एक साल को मिस कर जाता है कि भाई ये सब वीडियो देखो, रिसर्च करो, कौन सा फंड लो, क्या करो एंड फलाना एंड ढिंका एंड ऑल दैट, राइट। बट यू नो लेकिन बिगर पॉइंट ये है कि लाइक यू नो अकाउंट खोल लेने से और उसके अकाउंट में इनफ होना, ये दोनों अलग चीज़ें हैं, राइट। अकाउंट खोलने से कुछ नहीं होगा, अकाउंट में पैसे भी उतने जाने चाहिए जिसकी ग्रोथ होने को टाइम लगता है। तो गोल्डन रूल ये है कि लाइक पार्टिसिपेशन को प्रिपरेशन मत समझिए सिर्फ इसके लिए कि भाई अकाउंट खोला है घर के लिए या स्टॉक प्रोफाइल आज ग्रीन है इसका मतलब यू नो रिटायरमेंट सॉल्व हो गया, राइट। अभी बुल मार्केट में एवरीथिंग गोज परफेक्टली फाइन, बट व्हेन इट गोज टूवर्ड्स द बेयर सेक्शन तब आपकी रिटायरमेंट भी हिट हो सकती है, विच इज़ ऑल्सो अ रिस्की गेम, राइट। तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए चाहिए लाइक कंसिस्टेंसी, टाइम, डाइवर्सिफिकेशन और रियलिस्टिक स्पेंडिंग, राइट। एक अकाउंट खोला उतना ही काफ़ी नहीं है बिकॉज इफ़ यू लुक एट इट कि आई नो सो मेनी ऑफ देम हु नेवर पेड अटेंशन टू दिस और आज वो आर ऑन पब्लिक असिस्टेंस एंड देर बेयरली मेकिंग देयर मीन्स इन देर वेरी सीनियर एज, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट, राइट। क्योंकि उस टाइम पे उतना काम नहीं हो सकता, उतनी इनकम नहीं है, यू आर डिपेंडेंट ऑन योर फैमिली और सम अदर थिंग्स गोइंग ऑन, राइट। लकीली एटलीस्ट यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट सिस्टम होता है गवर्नमेंट के थ्रू, मगर स्टिल इट्स नॉट दैट इनफ। सो यू नो जितना ही आप स्पेंड कर रहे हैं अभी अपनी कार लेने में, उतना ही आप अगर कोशिश कर रहे हैं उतना ही अगर आप अपने 401k में डाल सकते हैं तभी ही उतनी $1,000 पेमेंट वाली EMI की कार लीजिए, बिकॉज दैट मनी इज़ गोइंग टू बी वेरी मच नीडेड टू यू इन फ्यूचर। तो गाने वाने सुनिए और सिक्स फिगर को एंजॉय कीजिए। विल बी राइट बैक आफ्टर फ्यू सॉन्ग्स।

तो जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं दिल से देसी विद मैन। ऑलमोस्ट 1.5 घंटे पूरे हो चुके हैं जहाँ पे हम बात कर रहे हैं, डीबंक कर रहे हैं सिक्स फिगर सैलरी की, राइट? और हम कैसे जूझ रहे हैं। अभी तो मैंने सिर्फ एक सरफेस को टच किया है, यू नो आई हैवंट फील द अनियन प्रॉपरली है, मगर ये तो मैं ऊपर ऊपर से जब बात कर रहा हूँ। तो चलिए बात करते हैं, लाइक यू नो नौकरी गई तो क्या हुआ, राइट? और देसी इमिग्रेंट का जो मैथ चलता है, और फिर एक सैंडविच जनरेशन की बात करते हैं कि भाई यू नो इधर बच्चे उधर पेरेंट्स, उसका क्या है, राइट? तो अब एक यू नो ऐसे फियर में लोग जी रहे हैं जो चुपके चुपके होता है, बट नॉट नॉट लॉट ऑफ पीपल टॉक अबाउट इट। एंड अगेन दिस इज लाइक जॉब सिक्योरिटी, स्पेशल अगर आप इमिग्रेंट वीजाज के ऊपर या स्टेटस के ऊपर जो चल रहे हैं, उसकी दुआ से जो काम हो रहा है, तो उसमें कितना बड़ा फियर और रिस्क फैक्टर है, राइट? एक यूएस सिटीजन के लिए शायद वो सोचे कि लाइक यू नो चलो 1 महीना ऑफ ले लूँगा, जॉब ढूंढ लूँगा, कुछ फिगर आउट कर लूँगा। लेकिन एक इमिग्रेंट के लिए जो सोचते हैं वो क्या सोचते हैं ना, कि भाई यू नो मैं इसे अफोर्ड कैसे करूँगा, मैं अपना स्टेटस कैसे मेंटेन करूँगा, राइट? इट इज़ लाइक क्या मैं लीव ले पाऊँगा, क्योंकि उनके लिए तो कोई लीव ही नहीं है, राइट? लाइक यू नो यूर गॉन एंड देन यू हैव टू जस्ट क्विकली हसल फॉर द नेक्स्ट वन, और उसकी एक क्लॉक स्टार्ट हो जाती है टू सिक्योर अनदर जॉब, राइट? जिसके साथ में खर्चे भी चल रहे हैं। तो ये यू नो वजह से उनकी इमरजेंसी जो फंड है वो हर फैमिली के लिए उसका मतलब भी अलग होता है, कि भाई फ्यूचर सिटीजन आपका इमरजेंसी फंड यू नो 3 महीने तक हो सकता है, मगर जो वीज़ा लिंक्ड में उनके इमरजेंसी जो फंड है वो 1 महीने का भी उसकी कुछ वैल्यू नहीं है, बिकॉज यू नो यू आर लिटरली यू नो वर्किंग ऑन योर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल, कि भाई नेक्स्ट जॉब पे कैसे जाएंगे, राइट? तो बॉटम लाइन अगर ये है, यू नो आपका इमरजेंसी फंड किसी इंस्टाग्राम की एडवाइस को मैच नहीं करेगा, वो आपकी अपनी रिस्क सिचुएशन को मैच करने वाला होना चाहिए, बिकॉज हाउ मच कैन यू टॉलरेट एंड देन डू यू हैव अ बफर विथ यू समथिंग वुड गो साइडवेज, राइट? और सेकेंड पैरेलल ये है कि लाइक एक ऐसा टॉपिक है जो मैं इस पर बात करना चाहता हूँ, कि भाई जो इनफ डिस्कस नहीं होता, राइट? कि इंडिया में फैमिली को सपोर्ट करना और सिर्फ रेमिटेंसेस भेजने की तरह नहीं है ये, बल्कि एक पूरी पैरेलल रिस्पॉन्सिबिलिटी चल रही है, राइट? तो इसीलिए लाइक बोलते हैं ना कि सैंडविच जनरेशन, के इसका मतलब क्या है, पेरेंट्स के मेडिकल बिल, सबलिंग्स की यू नो एजुकेशन, इमरजेंसीज, प्रॉपर्टी इश्यूज बैक होम, ये सब चल रहा होता है यू नो, जबकि यहाँ यू नो बच्चे आपके कॉलेज में जा रहे हैं या स्कूल में जा रहे हैं, और आप अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग भी हो रही होती है, राइट? तो आप दोनों के बीच में सैंडविच हो रखे हैं, राइट? तो इसकी इसको कह सकते हैं कि लाइक यू नो एक देसी एडिशन है सैंडविच का, राइट? कि भाई एक जनरेशन ऊपर आप सपोर्ट कर रहे हैं और एक जनरेशन आप नीचे प्रिपेयर कर रहे हैं, और दोनों के बीच में आप खड़े हैं, जिनमें लाइक यू नो यू आर द सपोर्ट फैक्टर इन बोथ द साइड्स। तो एक छोटा सा सिनेरियो, लाइक अगर एक कपल एक मेहनत करके लाइक 50,000 इमरजेंसी फंड अपना बना रहा है, लाइक इफ दे हैव दिस राइट नाउ, और फिर एक अचानक से एक दिन आपको फोन आएगा इंडिया से कि भाई यू नो कुछ हो गया, स्ट्रोक हो गया, समथिंग कम अप, राइट? इतना क्रेजी मेडिकल यू नो सिचुएशन हो गया, अभी आपको फ्लाइट, फैमिली, हॉस्पिटल सपोर्ट सब कुछ अनएक्सपेक्टेड था, और जो आपने अपने लिए फैमिली फंड बनाया था वो प्रेटी मच अचानक यू नो उस फंड का यू नो पर्पस ही बदल गया, एंड नाउ इट जस्ट गॉन, इट टुक यू सो लॉन्ग टू बिल्ड दैट, राइट? तो इसी नहीं है लाइक यू नो जेनेरिक अमेरिकन फाइनेंशियल एडवाइस हमेशा डायरेक्टली कॉपी पेस्ट नहीं हो सकती इमिग्रेशन इमिग्रेंट फैमिली के लिए, बिकॉज इमिग्रेंट फैमिलीज आर गोइंग थ्रू अ कम्प्लीट डिफरेंट सिनेरियो, राइट? उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग है, उनकी प्लानिंग अलग है, उनकी कम्प्लीट लाइफ स्टोरी ही अलग है, तो हाउ वुड यू मैनेज दैट? तो अगेन दीज आर ऑल द मिथ्स ऑफ 100,000 सैलरी जो है, राइट? कि भाई कितनी सारी चीज़ें हैं उसके साथ में। तो चलिए गाने वाने सुनिए, आई विल बी राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। Oh,

क्या बात है, दिस इज ओल्ड एंड गोल्ड सॉन्ग, क्या चला था ये गाना, यू नो गुड सॉन्ग। तो आप सुन रहे हैं दिल से देसी विद मैन ऑन रेडियो नायरा, यू कैन ट्यून इन ऑन 99.9 एफएम एचडी 4 101.9 एफएम या 1490 एएम पर, और आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं ऑन 919-999-8595। सो वी आर ऑलमोस्ट कमिंग क्लोज टू 2 आवर्स नाउ। तो चलिए अब एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं, शर्मा जी का बेटा राइट, और उसके कंपेरिजन की कीमत। वी आर टॉकिंग अबाउट 6 फिगर सैलरी का जो मिथ है राइट। तो अब थोड़ा सा ऑनेस्ट बात करते हैं कि भाई हमारी कम्युनिटी में यू नो अचीवमेंट्स को कैसे तोला जाता है, एक प्रेशर बनाया जाता है तो कभी कभी बहुत ज़्यादा होता है राइट। कहाँ पढ़े, कौन सी कंपनी में है, कौन सा नेबरहुड है, कौन सा स्कूल डिस्ट्रिक्ट है, बच्चा कौन से कॉलेज में है, आपने ये आपने वो, कितनी ज़मीन जायदाद, ऑल दिस यू नो दिस बैगेज कम्स राइट। जैसे ही आप किसी के साथ में बैठे तो कई लोगों के साथ में तो बैठना ये गुनाह हो जाता है क्योंकि यू नो दिस इज़ ऑल दे हैव टू टॉक अबाउट राइट। तो तो ये सब सीधा नहीं पूछते, लेकिन ये कंपैरिजन साइलेंटली चलते रहता है राइट। पुराना ही कॉन्सेप्ट है, लाइक इसको कहते हैं कीपिंग अप विथ जोन्स राइट। तो हमारे देसी वर्जन में इसको कहते हैं कीपिंग अप विथ शर्मास, जिसमें बहुत सारे टीवी सीरियल्स भी बने होंगे और वो नो वेब सीरीज बनी है राइट। तो शर्मा जी ने नया घर ले लिया,

फैसला ले ली, बच्चों को प्राइवेट स्कूल भेज दिया, यूरोप की ट्रिप कर ली, ये सब सोचते हैं, पर हम पीछे रह गए, राइट? सब लोग यही सोचते होंगे कि शायद हम बट असल में देखा जाए तो शायद हम पीछे नहीं है, शायद हम किसी की हाईलाइट और रील देख के उसकी पूरी बैलेंस शीट नहीं समझ सकते क्या चल रहा है, राइट? तो याद करो कि लाइक भाई किसी की लाइफस्टाइल देख के, याद रखो कि भाई किसी की लाइफस्टाइल देख के आप उसके बैलेंस शीट को पता नहीं लगा सकते, उसकी अमीरी दिख रही है बट उनके डेट्स में जो कितने डूबे होंगे वो आपको नहीं पता, और मे बी देर नॉट इन डेट बट यू जस्ट के नॉट प्रज्यूम कि भाई ये सब चीज़ें देख के आप भी उस ट्रेंड पे चले जाए, राइट? कोई सिंपल दिख सकता है कहीं पे जैसे कि उस बंदा वो इंसान कंप्लीटली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, राइट? उसने फटे हुए स्नीकर्स पहने होंगे बट ही कैन गो बाय मजराडी टुडे बिकॉज ही इज नॉट इन टू शो ऑफ बिजनेस, राइट? तो कभी भी दिस इज नॉट लाइक हाउ यू कैन कंपेयर थिंग्स, राइट? तो दूसरी तरफ, राइट, एक सक्सेस को भी सेलिब्रेट करना बहुत जरूरी है, राइट? आई एम नॉट जस्ट सेइंग कि भाई पैसा है तो यू नो डोंट स्पेंड इट एंड वॉट नॉट, आई एम कंप्लीटली नॉट इन दैट माइंड सेट, पर हमें बैलेंस करना जरूरी है, राइट? क्योंकि आज का सिर्फ शो यही नहीं है कि भाई स्ट्रगल करें, पैसा बनाएं और एंजॉय ना करें। कई अमेरिकन फैमिलीज ने जनरली एक्स्ट्राऑर्डिनरीली सक्सेस अचीव की है, सक्सेस पाई है इस कंट्री में, जो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेस ओनर्स, रिसर्चर्स, बहुत सारे लोग हैं, राइट? अपने मेहनत से बने हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट की, उन्होंने रिस्क लिया है और उन्होंने बहुत वेल्थ बनाई है, राइट? तो एन्जॉय करें अपने सक्सेस को, राइट? अच्छा घर, अच्छी गाड़ी किसी को पसंद नहीं है, राइट? यू शुड ऑलवेज हैव दैट बट एक कम्फर्ट लेवल में हो। इनमें ये चीज़ें होना कुछ गलत नहीं है, लाइक गोल पॉवर्टी से जीना नहीं कभी हो सकता, गोल है कि आप अपने मींस में रह के करिए, और हो सकता है तो थोड़ा अंदर ही रह के करिए, बाहर जाके मत करिए, बिकॉज इट कैन ईजिली हर्ट यू, इज व्हाट द होल पॉइंट इज। तो जैसे कि लेकिन सिंपल सी बात है, फैमिली ए या फैमिली बी ले लो, राइट? एक फैमिली है जो 250K बना रही है, एक है जो 150K बना रही है, अब एक फैमिली है जो 100,000 लेस बना रही है बट उसके खर्चे सब कुछ है, लाइक उनकी मॉडेस्ट घर है, यूज्ड कार या लो पेमेंट कार है, कम क्रेडिट कार्ड्स हैं या है ही नहीं, हेल्थी इमरजेंसी फंड है, और जॉब लॉस का सर्वाइवल उनके पास एक साल तक का है, देन दे आर हैप्पी यार, यू आर लिविंग अ चिल लाइफ, लाइक यू आर हैविंग एवरीथिंग, यू आर एंजॉइंग, कोई इतना ज़्यादा आपके सर के ऊपर स्ट्रेस नहीं है, टेंशन नहीं है, कोई ब्लड प्रेशर की आपको गोली नहीं खानी पड़ रही। सो दीज आर द मेन थिंग्स यू वॉन्ट लुक फॉर, राइट? के इनकम में आई ऑलवेज से थिंक लाइक गो बाय दिस कि इनकम वो है जो आप कमाते हो, राइट? वेल्थ है जो आप बचाते हो, और फाइनेंशियल फ्रीडम वो है जो बिना कमाए आप कितनी देर सर्वाइव कर सकते हो, दैट्स ऑल व्हाट मैटर्स, राइट? तो दीज आर द थ्री इंपॉर्टेंट थिंग्स, दैट्स द क्रक्स ऑफ द शो टुडे कि भाई आई रिपीट अगेन, राइट? इनकम वो है जो आप कमा रहे हो, राइट? वेल्थ लाइक आपकी वेल्थ वो है जो आप बचा रहे हो, खर्च रहे हो वो वेल्थ नहीं है आपकी, बिकॉज दैट मनी इज गॉन, इज नॉट योर्स एनी मोर, द मिनट यू हैव अ ट्रांजैक्शन दैट मनी इज गॉन, इज नॉट योर्स। और फाइनेंशियल फ्रीडम वो है जो आप बिना कमाए कितनी देर सर्वाइव कर सकते हो, दैट इज द ट्रू फाइनेंशियल फ्रीडम, कि आपको कल सुबह उठ के काम करने की टेंशन ना हो, तो आप बिल कैसे पे करोगे उसकी टेंशन ना हो, दैट्स द फाइनेंशियल फ्रीडम। तो गाने वाने सुनिए, विल बी राइट बैक फॉर द क्लोजिंग, एंड देन हम मिलते रहेंगे और बात करते रहेंगे इसी तरीके से, इसी टॉपिक्स के ऊपर।

क्या बात है। तो दोस्तों आज आप सुन रहे थे दिल से देसी विद मैन। वी आर ऑलमोस्ट कमिंग क्लोज टू 2 आवर्स। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 एफएम HD4 पर और 101.9 एफएम पर, या तो आप ऑल्सो ट्यून इन कर सकते हैं 1419 AM पर। तो चलिए हम दोस्तों अब क्लोजिंग पे आ चुके हैं। आज हम बात कर रहे थे सिक्स फिगर सैलरी का जो मिथ है, राइट, और हम कैसे उससे जूझ रहे हैं। हमको लग रहा है कि अरे यार, लोगों को लग रहा है यार मस्त सब कुछ चल रहा है, मगर अंदर कैसी बैंड बजी पड़ी है, दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। तो यू नो आज हमने यही बात की है कि अमेरिकन इंडियन जो मिडिल क्लास है, राइट, उसकी बात कर रहे हैं कि और एक चीज़ क्लियर है, यू नो, करना चाहता हूँ कि सक्सेस अच्छा है, अगर घर है, गाड़ी है, कंफर्ट है, ये सब कुछ अच्छा है, इनमें कुछ भी गलत चीज़ नहीं है, राइट। दिस इज़ वेरी गुड टू हैव, बिकॉज इसी के लिए हम जीते हैं, काम करते हैं। व्हाई नॉट हैव अ कंफर्ट? अपने मेहनत ही है, अपने को एंजॉय करनी चाहिए अपनी ज़िंदगी को। बट यू नो शायद यू नो मैं ये बताऊँगा कि बस इतना ही याद रखें कि भाई इनकम, जो इनकम को वेल्थ मत समझिए, इनकम में खर्चे भी बहुत होते हैं। घर को आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी मत समझिए, येस ऑफ कोर्स, पर उसके ऊपर डेट भी बहुत होता है। और सोशल मीडिया को कभी रियलिटी मत समझिए, राइट। रियल वेल्थ कभी इनविजिबल भी हो सकती है, जो आपके इमरजेंसी फंड्स में हो, बैंक अकाउंट्स में हो, 401(k)s में हो, रिटायरमेंट्स में हो, जो पोस्टों पर, रील्स पर नहीं पता लगती, वो डेट जो आपके पास है वो अपने छुपा के रखती है और उसको आपको फील गुड करा सकती है कि भाई यू नो आई एम सिक्योर्ड, अगर कल कोई जॉब चली जाए तो हमें सर्वाइव करने की टेंशन ना हो। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द सिक्स फिगर सैलरी। अगर आप उसमें उस चीज़ को मैनेज कर पा रहे हैं, देन यू आर द किंग, देर इज़ नथिंग रॉन्ग, देर इज़ नो वन बेटर देन दैट, राइट। तो शायद यही एक असली अमेरिकन ड्रीम है, सिर्फ ज़्यादा कमाना नहीं है, बिल्कुल ज़्यादा यू नो बल्कि ज़्यादा चॉइसेस होने ज़रूरी है, ज़्यादा सिक्योरिटी होना ज़रूरी है, और अपनों के साथ में ज़्यादा वक्त गुजारना ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप 24 घंटे लाइक काम के चक्कर में नहीं घूम रहे हैं, अपने खर्चों को पालने के चक्कर में नहीं घूम रहे हैं, राइट। तो डॉलर में यू नो सैलरी बढ़ सकती है, लेकिन अगर एक्सपेंसेस, एक्सपेक्टेशंस और स्ट्रेस भी उतना ही है, उसी स्पीड से आपका बढ़ रहा है, तो हम लोग यू नो आप बढ़ नहीं रहे, ये बस एक यू नो एक फास्ट ट्रेडमिल पर दौड़ रहे हैं ऑल द टाइम। यू आर जस्ट गोइंग ऑन अ ट्रेडमिल टू जस्ट कीप अप विद द एक्सपेंसेस, राइट। तो दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आई वांट टू टॉक अबाउट, कि इसीलिए मैंने सोचा कि लाइक यू नो व्हाई नॉट टॉक अबाउट दिस, क्योंकि सभी को यही लगता होगा कि भाई यू नो ही सेट, ही हैज़ वेरी गुड जॉब, कंपनी ये वो। चाहे आप अगर कोई बहुत ही धुरंधर कंपनी में काम कर रहे हैं, मगर आपके एक्सपेंसेस ही आपके कंट्रोल से बाहर है, आपकी रीच के बाहर है, देन एट दैट पॉइंट नन ऑफ दिस मैटर्स। अगर आपका वीज़ा स्टेटस और यही चीज़ों में आपको टेंशन है, तो और उसके पैरेलल आपने इतनी चादर फैला रखी है, तो फिर आप अपने आप में ही टेंशन में घूम रहे हैं। आप डेफिनेटली आप ब्लड प्रेशर के शिकार होंगे इस चीज़ों के चक्करों में। तो राइट, यू नो डोंट गो बाय द रील्स, डोंट गो बाय अदर थिंग्स, लाइक ऑल्सो लुक एट द एक्सेल शीट, स्टार्ट बजटिंग, अंडरस्टैंड वेयर योर मनी इज गोइंग। देयर आर सो मेनी एप्स नाउअडेज जो आपके पूरे सिंगल डॉलर को ट्रैक करती है कि हाउ आर यू स्पेंडिंग इट। आई जस्ट क्लोज विद अ स्मॉल एग्जाम्पल के कॉलेज टाइम में मुझे कॉफ़ी पीने का बहुत शौक था, तो जब जाओ कॉलेज में ही स्टारबक्स थी तो पीते रहो, यू नो दोस्त यार काम करते थे तो जब ही जाते थे रेडबुल पकड़ा दिया, ये पकड़ा दिया, स्टारबक्स पी लिया, वो आई गॉट एडिक्टेड टू इट। फिर एक ऐप आती थी कुछ इंट्यूट की, मुझे याद है आई डाउनलोडेड लिंक माई बैंक अकाउंट, तो मुझे पता लगा कि मैंने एक साल में, मेरे ख्याल से ये साल 2010 होगा या कुछ होगा, ऑलमोस्ट मैंने उस टाइम पे 900 या $950 की सिर्फ कॉफ़ी पी ली थी, $1000 के ऊपर मैंने कॉफ़ी पी ली थी, एंड आई वॉज अ स्टूडेंट दैट टाइम। देन आई अंडरस्टूड कि भाई यू नो क्रेडिट कार्ड जो है वो कितना, कार्ड जो डिजिटल पेमेंट वो कितनी ईजी है स्पेंड करने में। जब आप डॉलर से कैश पे करते हो तो आपको पता लगता है आपका पैसा जा रहा है, मगर आप जब फ़ोन टैप कर रहे हो तो आपको पता नहीं लगता कि आपका पैसा जा रहा है। दिस इज़ द वे ऑफ स्पेंडिंग, राइट। सो आप होपफुली आप इंजॉय कर रहे हैं शो को, और अगर आपके पास में कोई ऐसे फीडबैक हो या टॉपिक्स हो, देन प्लीज़ फील फ्री टू रीच आउट टू रेडियो नायरा और माई सेल्फ। एंजॉय कीजिए, आज सैटरडे है, कल संडे है, देयर इज लॉट्स ऑफ थिंग्स हैपनिंग अराउंड हियर। ऑलमोस्ट नेक्स्ट वीकेंड वी आर गोइंग टू लेबर डे, और समर प्रीटी मच खत्म होने आ रही है। एंड वन लास्ट थिंग आई फॉरगॉट टू टॉक अबाउट, हार्ट एंड सोल गोज आउट फॉर नेपाल, राइट। इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई और बहुत ही लोग यहाँ पे उसके साथ में पीड़ित हुए हैं।
ऑल्सो प्रेयर सेरेमनी हैपनिंग है एजेंसी, प्लीज़ ज्वाइन करिए। और बहुत सारे रिलीफ फंड्स भी हैं, अगर आप थोड़ी सी भी हेल्प कर सकते हैं इट हेल्प्स अ लॉट। बहुत ही लोगों के लव्ड वंस वहाँ पे यू नो मिसिंग है या गुजर चुके हैं। प्लीज़ यू नो कीप देम इन योर थाट्स एंड प्रेयर्स एंड ऑल द हार्ट एंड सपोर्ट गोज फॉर नेपाल, जो इतनी भयंकर ट्रेजेडी हुई है एंड लॉट्स ऑफ लाइफ हैज़ बीन लॉस्ट फॉर द पिलग्रिम्स और द पीपल हु आर लिविंग अराउंड देयर। तब तक के लिए आप सुन रहे थे दिल से देसी विद वैन, आई विल बी बैक नेक्स्ट वीक। और तब तक के लिए आप इन्जॉय कीजिए, सेफ रहिए, इन्जॉय करिए और एक गाना सुन लीजिए जाने के पहले। थैंक यू।

WCMC FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 1490.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: आप सुन रहे हैं नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD 44 1090 AM। पक्का देसी, पक्का लोकल।

WCMC FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 1490.

Yeah. भाई तेरा बस लिखत गाने हर दुनिया देती ताने बस इन दिक्कत पर जब गाना बज लगे सब सर हिलाने शौकीन चाहिए टिकटे चाहे होने देना शौक ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते भर डाला ओटू इनके फेस बनते इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते ए

Barrel. Yeah. भाई तेरा बस लिख तगाने हर दुनिया देती ताने वैसे इन दिक्कत पर जब गाना बजे लगे सब सर हिलाने शौकीन चाहिए टिकटे चाहे होने देना शौक ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते भर डाला ओटू इनके फेस बनते इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते ए

WTMC FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 1490

ठनक आता माझी सटक सटक बम तेरा गुदे खाए कमर पे तेरी बटरफ्लाई बॉडी तेरी मक्खन जैसे खाने में बस तू बटर खाए बेबी टिकट टिकट काटू तेरी टिकट टिकट खेलता नहीं क्रिकेट विकेट पर ले लूं तेरी विकेट विकेट।

0: करे अंग अंग तेरा, तेरे लिए कुछ भी कर लूंगा, तेरी मैं हर लूंगा कोई भी पीड़ा,
1: yeah.
0: पागल हुआ तेरे पीछे जैसे दिमाग में कीड़ा, लगे मीठी जैसे शक्कर शक्कर, आजा चला ले चक्कर चक्कर, बाकी के लौंडे पकड़ पकड़, I am the baddest motherfucker,
1: yeah.
2: हार्ट बीट

सुन लिए आपने यूपी के बोल, आता ऐका महाराष्ट्र से ठोस।

पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।

हरमीत, तुझे देख के पता है क्या लगता था? कि तू कुछ बहुत बड़ा करेगा। कितना पोटेंशियल है तुझ में। क्या हो गया है? कुछ बन क्यों नहीं पाया तू? What happened?

0: बस का नहीं था।
1: तो तू अपना आलस छुपाने के लिए झूठ बोलेगा?
0: हाँ, झूठ में क्या बुराई है?
1: क्या बुराई है किसी सच्चे आदमी से पूछना?
0: सच्चा आदमी तुझे नहीं पता क्या?

CFM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 1490.

टू ऑल ऑफ यू, आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स एंड मैं हूं सबके दिलों का चिराग। मेरा नाम है आरजे पराग, 7 से 10 में रहता हूं आपके साथ, मिटाता हूं आपका स्ट्रेस एंड बनाता हूं आपके मूड को रिफ्रेश। कैसे चल रही है आज की आपकी ये इवनिंग की शाम, वीकेंड की पार्टी जो है वो शुरू हो गई है सब लोगों की। एंड वीकेंड में जो मज़ा होता है, जो आराम होता है, वो सुकून होता है, वो और कहा। अगर आप वीकेंड फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर रहे हो तो फिर क्या ही कहने। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स एंड कैसे चल रही है आपकी आज की शाम, आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। फिलहाल इस प्यार भरे मौसम में एक चाय या फिर कॉफ़ी और उसके साथ निर्वाणा नाइट्स शो का यह पहला गाना तो बनता है। बने रहिएगा रेडियो नायरा पर, पक्का देसी, पक्का लोकल।

लाइक्स एंड एंजॉय किया आपने ये गाना। ये गाना वाकई में काफ़ी बेहतरीन था, जिसने इस वीकेंड की वाइब तो सेट कर रखी है। फिलहाल रुख करते हैं हमारे एरिया के लोकल खबरों की तरफ। और पहली न्यूज़ ये है कि रैली में युवाओं के लिए नाइट कर्फ्यू, दैट इज़ यूथ कर्फ्यू लगाने की चर्चा तेज़ हो गई है। आज पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पास के शहर नैशविले में कर्फ्यू की वजह से जुवेनाइल क्राइम से बड़ी गिरावट आई है, जिसे देखते हुए रैली शहर के लीडर्स भी इसे यहाँ लागू करने की पूर्व तैयारी में है। यही मैं कह रहा था कि कर्फ्यू लगाने का ये सीन हो जाएगा कि लोग इकट्ठा कम होना कम हो जाएंगे, देन जो भी चीज़ें चलती है, जो नहीं चलनी चाहिए वो नहीं चलेंगी, एंड इट्स गुड, है ना। आपकी राय इसके बारे में क्या है आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। एंड फिलहाल एंजॉय करते हैं ये अगला गाना, सुनते रहिएगा रेडियो नायरा, पक्का देसी तो है साथ में पक्का।

पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना

आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स, एंड जो नाइट कर्फ्यू होने वाला है, यूथ कर्फ्यू। ओके, तो यूथ कर्फ्यू से क्राइम जगत में बड़ी तेजी से गिरावट आ गई है, ये मैं कह रहा था। एंड दूसरी बात ये कि शहर को सुरक्षित बनाने के लिए मोर स्क्वेयर और गो रैली बस स्टेशन के पास वाले पेडेस्ट्रियन टनल को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है। अंडरकवर पुलिस ऑपरेशन में यहाँ हाल ही में 35 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, और इसके बारे में जो भी अपडेट आती है आई विल शेयर यू सून। एंड यार, धीरे धीरे ना क्राइम कम होते रहना चाहिए, क्योंकि क्राइम पूरी तरह से ख़त्म करना ही जो है वो प्रशासन का लक्ष्य अभी पूरी तरह से बन चुका है। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स, एंड यार मौसम तो काफ़ी अच्छा हो रखा है, इस प्यारे मौसम में एक अच्छा गाना सुनना तो बनता है। फिलहाल एंजॉय करते हैं ये अगला गाना।

हेलो हाय, कसक काय, आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स। अगर आप आज बाहर निकल रहे हैं तो रेड हैट एम्पी थिएटर में चांस द रैपर का बड़ा कॉन्सर्ट है। इसके अलावा कोका बूथ पर वॉर बैंज का लाइव शो होने जा रहा है। मौसम थोड़ा गर्म रहेगा इसलिए पानी की बॉटल साथ में रखें। बॉटल साथ में रखना ज़रूरी है पानी की, और पानी हमेशा थोड़ी थोड़ी देर में पिया कीजिए, क्योंकि बॉडी को हाइड्रेटेड रखना ये बहुत ज़रूरी हो चुका है। ये मैं वही कह रहा था कि यार, क्राइम जो है, अगर हर साइकोलॉजी ये कहती है अगर देश का यूथ आपका सेठ है तो आपके देश का भविष्य जो है वो काफ़ी अच्छा होने वाला है। इसलिए यूथ को कंट्रोल करने का जिम्मा जो है वो प्रशासन ने पहले से ही उठा रखा है, एंड जिसके रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। फिलहाल तो शाम बेहतरीन चल रही है, और उसमें भी अगर आप निर्वाणा नाइट्स सुन रहे हो तो सोने पे सुहागा। एंजॉय करते हैं अगला ही गाना।

WCMC-FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 14.